राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन-धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी, किंतु केवट नाव नहीं लाता। कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है! एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामनावतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता। कहता है, नाथ आज मैं कह न पावा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रामचरितमानस। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: Dengan demikian selesai acara kami untuk sore hari, pagi hari ini. Saudara-saudara pendengar, kami mohon agar Anda kirimkan saran-saran dan laporan Anda mengenai daya penangkapan siaran kami ini. Harap Anda catat alamat pos L kami yang sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Kami menunggu surat Anda di meja tugas kami di sini. Dengan ini selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara saudara-saudara pendengar, penyiaran Daki Surdas bersama dengan semua staf seksi bahasa Indonesia sebelum mengundurkan diri dari udara. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama.
1: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है। कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
2: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56%

0: खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
3: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
4: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहां तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
1: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का

0: नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बीसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
1: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
1: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
3: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केउंझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के

0: मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और पब्लिक पर @airnewsalerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एड्रेस SCO समिट इन किर्गिस्तान कैपिटल बिश्केक टुडे। Country's GDP grows 7.8% in first quarter of current financial

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली सेमाही के दौरान मुल्क की GDP की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7% रहने का अंदाजा लगाया था। अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के बारे में सालिसी से मुतालिक अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। नेपाल में इमदादी कारकुनों ने पनबिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले कारकुनों को तलाश करने के लिए पहाड़ी हिस्से पर धमाका किया। और लियोनेल मेसी ने बैनुल अक्वामी

0: फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस तरह अर्जेंटीना की कौमी टीम के साथ 21 साल से जारी सफर भी खत्म हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। SCO की इस सरबराह कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू है पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक साथ। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने दौरे के पहले दिन कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत की, महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया और दीगर आलमी रहनुमाओं के हमरा 6ठे वर्ल्ड नोमेड गेम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। जनाब मोदी ने कल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दो तरफा मीटिंग की। जनाब पुतिन के साथ बातचीत में जनाब मोदी ने मुसलसल जंग के बजाय जंग खत्म करने की जरूरत पर जोर देते हुए आलमी तनाज़ात के सिफारती हल की हिमायत की।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: बातचीत के दौरान भारत और रूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा समेत दो तरफा तआवुन के अहम उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इत्मीनान की बात है कि भारत और रूस के दरमियान तआवुन मुसलसल नई बुलंदियों तक पहुँचा है।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ईरान, जम्हूरिया किर्गिज और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें भी की। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किर्गिज़िस्तान के अपने दो रोज़ा दौरे के पहले दिन कल रूस, ईरान, जम्हूरिया किर्गिज़ और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ दोतरफा मीटिंगें कीं। इन मीटिंगों में दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कल शाम बिश्केक में दीगर SCO रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ 6ठे वर्ल्ड नोमेड गेम्स की बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। मौजूदा माली साल की पहली सैमाही के दौरान भारत की हकीकी GDP की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि साबिका साल इसी मुद्दत में यह 6.9% थी। आदादोशुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद से मुतालिक वजारत ने मौजूदा माली साल की अप्रैल से लेकर जून तक की पहली सैमाही के लिए GDP के तखमीने जारी किए हैं। उसने कहा है कि आलमी उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय मईशत में तरक्की की रफ्तार बरकरार रही है। वजारत के सेक्रेटरी डॉ सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी शोबों में शरह तरक्की बहुत मुस्बत रही, जिससे यह जाहिर होता है कि जुग्राफियाई और सियासी हालात के बावजूद सरकार के इकदाम का असर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की GDP की शरह तरक्की 7.8% रहने को एक बड़ा कारनामा करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस कामयाबी से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, सप्लाई निज़ाम में रुकावटों और आलमी गैर यकीनी के हालात के बावजूद मुल्क के अवाम की इज्तिमाई क़ुव्वत और उनके अज़्म की अक्कासी होती है। इधर वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मईशत की इस शानदार कारकर्दगी का सहरा मुल्क के अवाम और उनकी मेहनत को जाता है। सरकारी आदादोशुमार में भारत की GDP की शरह तरक्की 7.8% रहने के इंकशाफ के बाद अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया है। एक खबर रसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू में व्हाइट हाउस के सीनियर डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कुश देसाई ने कहा कि शरह तरक्की के आदादोशुमार से ट्रंप इंतजामिया के इस नुक्ते नज़र की तस्दीक होती है कि भारत तेजी के साथ तरक्की करने वाली इकतसादी क़ुव्वत है। उन्होंने कहा कि भारत की वसी और वसअत हासिल करने वाली मईशत से अमरीकी कंपनियों और सरमायाकारों के लिए बड़े मौके सामने आ रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया भी भारत में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने और अमरीका में और ज्यादा भारतीय सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: बारिश का जोर कम हो जाने का इम्कान है। अलबत्ता कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में बहुत शदीद बारिश से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड और शिमाल मशरकी भारत के बाज़ हिस्सों में भी तेज बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी दिल्ली में आज दोपहर को गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वेबर कल से भारत का 3 दिन का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के वसीतर इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की खातिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादला ख्याल करेंगे। लियोनेल मेसी ने बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इस तरह उनका अर्जेंटीना के खिलाड़ी के तौर पर 20 साल का करियर इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें वर्ल्ड कप की फतह, 2 कोपा अमेरिका खिताब और अपने मुल्क के लिए 207 मैच खेलने का रिकॉर्ड शामिल है। मेसी ने कहा है कि यह फैसला स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त के बाद से उनके जहन में था और फिर उनके वालिद के इंतकाल ने उन्हें मजीद कायल किया कि अब उन्हें खेल से अलहदा हो जाना चाहिए। 39 साल मेसी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट में इस फैसले का ऐलान किया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया शगुफ्ता। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले अहम उर्दू अखबारात में किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ आलमी लीडरों से मुलाकात को की अहम खबर के तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, किर्गिस्तान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ईरानी सदर मसूद पिजिशकियान से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत यूक्रेन मामले में तमाम पुरअमन कोशिशों का हामी, वजीर आजम और रूसी सदर की दिफाई तआवुन, तवानाई की फराहमी और तजारती ताल्लुकात पर बातचीत। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि फैशन टेक्नोलॉजी के पेशावर अफराद ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करें जिनमें भारत की महक भी हो। दिफाई सेक्टर के इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे राजनाथ सिंह का बयान। कुछ अहम बैन अलाक्वामी खबरें इस तरह हैं, नेपाल में तालीमी इदारों के 200 से ज्यादा तलबा लापता, हलाकतों की तादाद 900 से मुतजावज।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान मुल्क की GDP की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7% रहने का अंदाजा लगाया था। अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे के बारे में सालिसी से मुतालिक अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। और लियोनेल मेसी ने बैन अलाक्वामी फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस तरह अर्जेंटीना की कौमी टीम के साथ 21 साल से जारी सफर भी खत्म हो गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। गायन कलाकार हैं अनिशा रे और आज का राग है नट भैरव।
4: नमस्कार, मेरा नाम अनिशा रे, मैं राग नट भैरव से शुरू कर रही हूँ। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। गायन कलाकार थी अनीशा रे और आज का राग था नच भैरव। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। अनूप जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: अनूप जी, आप लंबे समय से लोक संस्कृति और संरक्षण और संवर्धन से जुड़े हुए हैं। आपके विचार में लोक संस्कृति और विज्ञान के बीच क्या संबंध है? क्या ये वैज्ञानिक है?
1: वैज्ञानिक होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विज्ञान का जो यूसेज है वो कला में बहुत अत्यंत आवश्यक है और जरूरी है। उसके बिना दोनों पूरे नहीं हो पाते। फोंटाना डिक्शनरी ऑफ थॉट में वो कहते हैं कि पॉप इज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्शन ऑफ फोक। अगर वो फोक नहीं है तो वो पॉप नहीं है।
0: जी।
1: अब अगर आज के समय हम कहें, अगर आप पॉप सुन रहे हैं तो उसको अनलार्ज करने के लिए, उसके कैनवस को बड़ा करने के लिए हम उस फोक को सुन रहे हैं तो वो पॉप सुन रहा है।
0: जी, उसमें आधुनिकता का रंग चढ़ा हुआ है।
1: आधुनिकता का रंग चढ़ा हुआ है। अगर आधुनिकता का

0: रंग उसमें नहीं चढ़ेगा। और वो आधुनिकता कहाँ से आएगी? वो विज्ञान से आएगी,
1: विज्ञान से आएगी,
0: बिना उसके नहीं होगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, मेरी पुस्तक है काल और ताल। तो काल और ताल का क्या है कि दिल्ली NCR का लोक संगीत के ऊपर आधारित वो किताब है। तो उस काल और ताल में जो है लगभग 150 के करीब धुनों का और गीतों का संकलन है उसमें, यानी कि पैदा होने से लेकर और मृत्यु तक के गीत हैं,
1: यानी कि लोक कलाएं हैं, लोक गीत
0: संस्कार,
1: संस्कार हैं,
0: गीत हैं, रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, सभी के जितने भी गीत हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि उसमें एक तरफ तो है गीत लिखा हुआ, ट्रांसक्रिप्शन है, गीत लिखे, दूसरी तरफ उसके सामने जो है पेज पर उसकी नोटेशन है,
1: दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
0: तो उसकी सरगम साथ में लिखी है, कौन से राग के ऊपर आधारित है वो लिखा है। तो उसका क्या मतलब होता है कि तमिलनाडु में बैठा व्यक्ति अगर वो दिल्ली NCR का लोक संगीत को जानना और बजाना चाहता है, नोटेशन उठाएगा और वो आपके यहाँ के उत्तर भारत की इसके गीत गाएगा, वो आसान हो जाता है उससे। तो ये ही नहीं, बल्कि मैं तो यूं कहता हूँ कि आपका कल को ग्रैंड चाइल्ड आता है और आपसे पूछता है वो आपके समय में कैसे गीत होते थे, तो मैं कहता हूँ हमारे उसमें ऐसा गीत होता था, वो कहेंगे गाकर सुनाए। मैं पढ़ के तो सुना दूंगा, गा के नहीं सुना सकता हूँ।
1: तो अगर वो साउथ इंडियंस अगर कोई सुनाना चाहता है, गाना चाहता है, वो अपनी भाषा में अपने शब्द लिख करके कह सकता है उस नोट पे,
0: उसी नोटेशन पे। तो वो संगीत, वो धुन तो रहेगी ना,
1: धुन तो रहेगी।
0: सो महत्वपूर्ण धुन है, महत्वपूर्ण गीत नहीं है। गीत तो जितने भी शब्द उसमें जोड़ते चले जाइएगा वो बनता चला,
1: ये बड़ी बात, ये
0: धुन नहीं बनती है।
1: जी अनूप जी, हमारी लोक परंपराओं में कृषि, मौसम, पशुपालन, जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और प्रकृति से जुड़े जो पारंपरिक ज्ञान जो मिलते हैं, क्या इस ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने और उनका दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है?
0: आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि हम ये काम कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं चेयरपर्सन कल्चर काउंसिल, तो उस कल्चर काउंसिल के तहत जो है ये कर रहे हैं कि हमने जैसे 22 भाषाएं हो गई और फिर उसके साथ 4-5 जो उपभाषाएं भी कुछ जो हैं उनको मिलाकर वहां के जो idioms हैं, जिन idioms में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पास करने का, यानी कि वही कृषि के ज्ञान का है और चीजों का है, तकरीबन हमारा काम पूरा हो चुका है। और उसमें क्या है कर रहे हैं कि एक तरफ तो उस भाषा में, मान लो तमिल में है, उसका भाषा में वो idiom होगा, उसके साथ उसका इंग्लिश में, रोमन उसमें लिखा होगा, साथ में उसका अर्थ हिंदी में लिखा होगा और उसका इंग्लिश में लिखा होगा।
1: अनूप जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ये सब जो आप दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या लगता है आपको?
0: क्या होता है कि एक समय आता है, चाहे वो धुन है चाहे वो एक फैशन है, वो सामयिक होते हैं। इलीट जो है वो फैशन क्रिएट करता है और उसके बाद वो मिडिल क्लास कॉस्ट्यूम पे उसी फैशन पर आता है और उसके बाद वो डाउन बिल्कुल नीचे के स्तर पे जो भी लोग हैं उन तक भी पहुंचता है और उसके बाद ऊपर के सर्कल के लोग छोड़ देते हैं। कुछ अरसे बाद वही बागड़िया लोहारों की गाड़ियों में जाते हुए नीचे से हम फोटो खींच के हम उनके पहरावे का फिर से दोबारा से वो बनाते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं और वो फिर से इलीट का वो हो जाता है। लेकिन धुन जो है इसी तरीके से धुन है सामयिक है, समाप्त हो गई, वहां पर अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है।
1: यानी कि लोग भूलने लगते हैं, याद दिलाने की आवश्यकता पड़ती है कि हमारी परंपराओं में, रीति रिवाजों में ये चलन था, ये परंपरा थी।
0: आज हो सकता है कि वो उसकी जरूरत नहीं रही क्योंकि हर रोज संगीत बदलता है, हर रोज गीत बदलते हैं।
1: लेकिन गीत और संगीत तो बदल तो जाते हैं, लेकिन वो जो मिठास जो पहले वाली है उसकी मिठास अलग होती है और आज की जो मिठास है वो उसकी अलग होती है।
0: तो उसको फिर से हम उसको सामयिक बना देते हैं दोबारा से। ये इसीलिए टेक्नोलॉजी, इसीलिए ये सारी चीजों की आवश्यकता है कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए।
1: अनूप जी, आप हरियाणवी रीति रिवाजों से, लोक गीतों से काफी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और उनका आपने, जैसे कि अभी आपने बताया कि उनका संवर्धन कर रहे हैं, संरक्षण भी कर रहे हैं, तो लोक गीतों, रागिनियों, कहावतों और लोक कथाओं में प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित आपके कई अनुभव दिखाई देते हैं और आपको कई अनुभव हैं। इनमें छिपे ज्ञान को नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? क्या ये सिर्फ दस्तावेजीकरण से ही पहुंचाया जा सकता है या फिर और कोई माध्यम है?
0: तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, प्रिजर्वेशन, प्रमोशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। पहले तो वैसे का वैसा रखा जाए। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने एक प्रयास किया। कुछ चीजें होती जो है ये पैशन से या शौक से होती है, जिसे कहते हैं ना घर फूक तमाशा देख, है ना, हमारे आम भाषा में, सरल भाषा में कहते हैं। तो मुझे ऐसे ही शौक चराया और और उस शौक में मैं पलवल, फरीदाबाद और इधर के इलाके में घूमने निकला, जैसे मेरी आदत थी, ये लगभग 35 साल पहले।
1: ये शौक के कारण?
0: शौक के कारण। तब वीडियो कैमरास और ये सब अभी आए तो थे, लेकिन कॉस्टली बहुत थे, होते थे।

0: लोगों की पहुंच से थोड़ी बाहर,
1: पहुंच से बाहर होते थे। मैंने इस इलाके में ब्रज का जो ये बेल्ट है इसमें घूमना शुरू किया, तो मैंने देखा वहां पर कुछ डांस फॉर्म्स, डांसेस हो रहे हैं गांव में, चौक पे, कहीं पे भी गीत, कहीं पे चौपाई हो रही है, खासकर होली के दौरान। तो वो जाकर मैंने किया, साल भर पहले देखा, फिर दूसरी बार लगा कि मुझे तो ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो हमने वो कैमरा लेकर गए हायर, फिर उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद फोटो भी खींच लिए। सब कुछ करने के बाद अब समझ नहीं आया कि उसका क्या करें, तो कई साल तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, यहां तक कि वो मेरा जो फॉर्मेट VHS था वो पोल्यूट होने लगा, फिर हमने उसको CD में ट्रांसफर किया, फिर भी डाटा बहुत लॉस हो गया। और उसके बाद समझ आया मुझे कि इसको मैं 2012 में, वो 92 में मैंने रिकॉर्ड किए, और 2012 में जाकर समझ आया कि इसको मैं क्या उपयोग कर सकता।
0: और अनुप जी, मुझे लगता है कि अगर हम इनको नहीं संजो कर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम किस प्रकार का ज्ञान दे पाएंगे, उनको हम किस प्रकार बता पाएंगे कि हमारी पहले वाली पीढ़ी जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, जो मान्यताएं थी, वो आज के आधुनिक दौर में वो गुम होते से नजर आएंगे और आज की पीढ़ी को वो समझ में नहीं आएगी, और हमारी संस्कृति और हमारी लोक कलाएं, गाथाएं, रीति रिवाज, उसी के कारण तो पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनती है। आप मानते हैं ना?
1: बिल्कुल बनती है। और जो मैं आपको बता रहा था अभी, कैसे हमने 12 साल बाद उसका हमें समझ में आया कि हम इसका क्या करें, तो हमने एक कार्यशाला लगाई। अच्छा। जिसमें 90 के करीब स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से इकट्ठे किए।
0: ये किस क्षेत्र के थे?
1: ये ब्रज के इलाके।
0: अच्छा,
1: का रसिया लोक नृत्य, गायकी में वो गाहे होते हैं और नृत्य में वो रसिया। तो अब वो जब हमने इकट्ठे 90 लोग करके डांस के कोचेस बुलाए, डांस के जो कोच कॉलेजेस में तैयार कराते हैं, तो उनको बुला लिए, उनको साथ में पहले वो दिखाए वीडियो कि देखो ये डांस कैसे कर रहे हैं। खुद मैंने गांव में गया तो मैंने खुद सीखा हुआ था। तो हमने खड़े होकर मंच पे 90 लोगों को सिखाया कि ये स्टेप ऐसे चलते हैं, दायां पांव ऐसे चलता है, ऐसे इस तरीके के मूवमेंट्स होती हैं। और ये करने के बाद 90 लोगों की हमने कोरियोग्राफी तैयार कराकर, ये उससे पहले कॉलेज में बता दिए सब जगह कि ये हम नया करने जा रहे हैं और अगले साल से इस विधा की प्रतियोगिता शुरू की जाएगी, इसलिए अपने अपने बच्चों को भेज दीजिएगा, हम उनकी टीम तैयार करा देंगे। तो उनको लालच भी हो गया, साथ में वो कोचेज जो है उनको ट्रेन किए, उसको डांस कर 90 लोगों का परफॉर्मेंस तैयार करके का हमने CD बना ली। CD बनाकर हर कॉलेज में उठाकर वो CD भेज दी, और वो CD वहां भेजने से क्या हुआ कि अगले साल जब प्रतियोगिता करी, लोगों ने वो CD देखकर, प्लस वो जो कोचेस तैयार किए थे वो देखकर, वहां पर रसिया की आज प्रतियोगिता होती है, उत्तर प्रदेश में नहीं होती है लेकिन हरियाणा में रसिया की नृत्य की प्रतियोगिता होती है। और इसी को देखकर मेरे यूट्यूब चैनल को गुजरात में किसी ने लोक नृत्य रसिया तैयार करा, यही देख देखकर। तो ये साइंटिफिक जो हम कहते हैं ना, ये विधाएं जो वैज्ञानिक सोच जो है वो वैज्ञानिक होना जरूरी है, मतलब उपकरण नहीं, वैज्ञानिक सोच होना जरूरी है। उस वैज्ञानिक सोच को आप देखकर क्या से क्या उसमें ट्रांसलेट कर लेते हैं, ये एक उपलब्धि।
0: अनुप जी, पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रमाण में तो अंतर होता ही है, और किसी लोक मान्यता या परंपरागत ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार करने में किन किन बातों की परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, और ये सब जो आप प्रिजर्व करते हैं उनको सत्यापित किस प्रकार करते हैं? जैसे कि अभी आपने बताया कि उनको प्रिजर्व किया था और उसके बाद आपने उस क्षेत्र के लोगों को बुलाया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: 10 साल इसमें गुजर गए, तो वहां जाकर देखा कि वहीं ये लोक नृत्य नहीं हो रहा है कहां, तो वो 10 साल पहले रात के अंधेरे में जाकर हमने शूट किए और हमें मिल गया, और तब हमारे पास कोई सैंक्शन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, जेब से पैसे खर्च करके और जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। कब क्या जरूरत पड़ जाए और कब क्या महत्वपूर्ण हो जाए, तो मैं युवाओं को इस दिशा में जरूर कहूंगा कि जब भी मौका लग जाए ये मत सोचो कि ये तुम्हारी जरूरत नहीं है, आगे जाने वाले समय में उसकी आवश्यकता भी हो सकती है और उसके महत्व भी तभी जाकर पता
0: वैल्यू भी
1: है। वैल्यू भी तभी पता लगता है।
0: अनुप जी, आज तो डिजिटल AI का युग है, AI ऑडियो विजुअल का युग है, और रिकॉर्डिंग जो आर्काइव्स हैं वो भी बहुत, आप एक सर्च करते हैं, नेट में जाके सर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इनको प्रिजर्व करने के लिए या फिर कहीं से रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा सबसे बड़ा प्रभावी माध्यम लगता है?
1: देखिए, सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि जो जीवंत चीज है तो उसको जीवंत, उससे ही उसको प्रिजर्व किया जाए।
0: यानी कि आप थोड़ी सी AI को थोड़ा सा साइड करना चाहते हैं
1: पहले क्षण में, तो यही है कि वो विधा जैसी है वैसी की वैसी फिर से खड़ी कर ली,
0: यानी कि ओरिजिनलिटी तो ओरिजिनलिटी है,
1: ओरिजिनलिटी है। उसके बाद जब वो ओरिजिनल हमने कर लिया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की आवश्यकता है, फिर उसके बाद हम उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करें। मैंने सांग है, गीत है, जो भी है, जब तक उसमें हम एक परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम उसको पॉप भी साथ में, वो जो फोक, तो जो युवा है उसको तो हर रोज नया कुछ चाहिए ना।
0: ये फ्यूजन की बात कुछ कुछ हो सकती है,
1: फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि युवा को तो एक ही चीज में

कैसे बांध के रखते, युवा क्या हमें भी नहीं बांध के रख सकते, हम भी तो फैशन की तरह कपड़े बदलते हैं, हम भी तो पहरावे बदलते रहते हैं, घर का रहने का 10 साल में चीज पुरानी लगने लगती है, हम फिर से बदल लेते हैं उसको अपने लिए सुखदाई बनाने के लिए। तो चाहे संस्कृति है, कल्चर है, इन सब में भी जब तक ये सब विधाएं साथ में हम अपनी टेक्नोलॉजी, हम अपना ये सब चीजों का सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक वो सामयिक नहीं रहेंगे।

0: तो होनी चाहिए और उसका उपयोग सही उपयोग होना चाहिए। तो ये सांस्कृतिक आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए भी सावधानियां जरूरी है, ये भी तो है, क्योंकि अगर हम मौलिकता खत्म कर दिए तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये पहले कहां से था, किस माध्यम से, किस क्षेत्र से, किन लोगों के जरिए, किस समुदाय के जरिए आया था।
1: देखिए, मौलिकता अगर नहीं होगी ना तो वो आपको खुशबू देगी ही नहीं। सिर्फ AI से काम नहीं चलेगा, ना ही चलता है। मैंने अभी एक फिल्म देखी जो सिर्फ AI बेस्ड है, उसमें कोई भी एक्टर्स भी और कोई भी किसी तरीके के बिल्डिंग स्ट्रक्चर, एनिमल, व्हाटएवर जो उसमें डिस्प्ले पे है, वो ओरिजिनल नहीं है, AI बेस्ड है। लेकिन वो AI बेस्ड देखकर उसमें जान नहीं लगती, थ्रिल आ जाता है, एक्शन आ जाता है, रोमांच आ जाता है, लेकिन वो जान नहीं आती है। वो जान तभी आती है जब उसमें ओरिजिनल जीवंत एलिमेंट होते हैं।
0: तो किसी भी परंपरागत ज्ञान को, रीति रिवाजों को और वैज्ञानिक रूप से दस्तावेज के रूप में लाने के लिए इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती हैं?
1: सबसे पहला तो है के साइंटिफिक हो, दूसरा रेलेवेंट हो, दूसरा सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, रेट्रो नहीं हो, सोच बदलनी है, वो सोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। एक समय में हम स्त्रियों के लिए, युवतियों के लिए हम दूसरी सोच रखते थे और आज दूसरी सोच।
0: अनूप जी, इसमें स्थानीय समुदाय जो शोध करता है, वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक संस्थानों की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए?
1: सभी संस्थानों को अपना अपना कंट्रीब्यूट जो भी संसाधनों के द्वारा कर सकता है, ताकि एक नई सोच क्रिएट हो और समाज के लिए सदुपयोगी हो, समरसता की हो समाज में, एक बराबरी का हो, किसी के साथ जिसे भेदभाव ना हो, ऐसा हमारा समाज हो, ऐसी साइंटिफिक सोच हमारी आपस में होनी चाहिए।
0: अनुप जी, युवाओं को लोक संस्कृति, पारंपरिक ज्ञानों और ये जो रीति रिवाज है उनको जोड़ने के लिए और करीब से और अच्छी तरह से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? युवाओं में किस प्रकार से रुचि बढ़ाई जा सकती है?
1: बच्चों के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो ट्रेवल करें, वो सिर्फ अपने गांव या अपने शहर में ना रहकर, बल्कि हम जहां तक हो सकता हो परिवार में या हम अपने शहर में बाहर उनको घूमने के लिए मौके दें। जितना हम उनको बाहर का संसार दिखाएंगे वो उतने विशाल हृदय के होंगे और उतने ही खुली सोच के होंगे, वो समाज के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए उतने ज्यादा उपयोगी होंगे।
0: तो निश्चित रूप से हमारी ये जो परंपरा है, हमारी ये जो ज्ञान है, हमारी ये जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, गीत गोविंद है, गीत संगीत है, वो और अधिक संरक्षित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंच पाएगी। अनूप लाठर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आपने इतना वक्त निकाला और हमारी लोक संस्कृति परंपराओं के दस्तावेजीकरण के विषय में आपने ढेर सारी जानकारियां दी, बातचीत की, हमसे अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

0: सैल्यूट करते हुए केंद्रीय सचिव।
1: धन्यवाद महोदय। महानिदेशक महोदय से पुनः अनुरोध है कि विमाननीय मुख्य अतिथि महोदय को समस्त बलकर्मियों तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें।
2: That brings us to the end of the investiture ceremony. And now we have for you the address by the Honorable Chief Guest for today, that is Shri Govind Mohan, the Chief Secretary of the Home Ministry.
3: सर्वप्रथम मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का संदेश आप सबके समक्ष पढ़ना चाहूँगा। मैं आरंभ करता हूँ। सशस्त्र सीमा बल के अलंकरण समारोह के अवसर पर बल के सभी जांबाज अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं तथा उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ अपरिहार्य प्रतिबद्धताओं के कारण इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, परंतु मेरी आत्मीय भावनाएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले सभी लोगों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस आपदा के दौरान एसएसबी मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में अत्यंत सराहनीय भूमिका निभा रही है। संकट की इस घड़ी में एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत स्वरूप है। राष्ट्र की सेवा करते हुए आज तक अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले एसएसबी के 51 वीर जवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन भी करता हूँ। उनकी वीरता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति एसएसबी की अमूल्य विरासत है। वीरता पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हो रहे सभी अधिकारियों एवं जवानों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। ये अलंकरण आपके साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट सेवा भाव के साथ आपके परिवारों के त्याग एवं सहयोग का भी सम्मान है। पदक विजेता अधिकारी और जवान बल के युवा कार्मिकों के लिए आदर्श हैं। मेरा आग्रह है कि आप अपने अनुभव,

कार्य पद्धति और कठिन परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों को नई पीढ़ी के साथ साझा करें। सीमाओं पर तैनात एसएसबी का प्रत्येक जवान देश का सजग प्रहरी, आपदा के समय प्रथम सहायक और भारत की सद्भावना का प्रतिनिधि है। मित्रवत सीमा पर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन एसएसबी की सबसे बड़ी शक्ति है। एसएसबी की विशिष्ट पहचान उसकी शक्ति और संवेदना के अद्भुत समन्वय में है। हिमालय जैसी अडिग दृढ़ता और गंगा जल जैसी पवित्र संवेदना के साथ एसएसबी भारत की मित्रवत सीमाओं की सुरक्षा, सीमावर्ती नागरिकों की सेवा तथा पड़ोसी देशों के साथ आत्मीय संबंधों को निरंतर सुदृढ़ करता रहे। सशस्त्र सीमा बल के सभी अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं और उनके परिवारों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सेवा के आपके संकल्प, साहस, त्याग और समर्पण को कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अब मैं अपनी ओर से कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मंच पर मेरे साथ जो मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल जी, गृह मंत्रालय में मेरे सहयोगी श्री राजेंद्र कुमार सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट, श्रीमती रेखा लोहानी एडिशनल डीजीपी, श्री रामलु नायक आईजी ऑप्स एसएसबी, इस सभागार में उपस्थित सीएपीएफ और अन्य पुलिस प्रतिष्ठानों के वरिष्ठतम नेतृत्व, उनके डीजीज, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और एसएसबी परिवार के सभी अधिकारी और कर्मीगण, गृह मंत्रालय की ओर से कुछ विषय हैं जो आज चूंकि मेरे को मौका मिला है तो मैं यहां रखना चाहूंगा। भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारे मंत्रालय का और अंततः भारत सरकार का एक बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और संवेदनशील लक्ष्य है। 15,000 किलोमीटर की लगभग भारत और अन्य देशों की सीमा की निरंतर चौकसी और उसकी सुरक्षा जब तक हम मजबूत ढंग से नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत की आंतरिक सुरक्षा का भी जो हमारा लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसलिए जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस विभिन्न सीमाओं पर काम करती हैं, वो देश के प्रति एक बहुत उच्चतम उनका बलिदान है और देश निर्माण के काम में एक बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पूर्व एक चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भारत के सभी बॉर्डर्स के लिए परिकल्पित करी है। इस चतुष्कोणीय सीमा व्यवस्था में जो चार प्रमुख स्तंभ हैं वो हैं बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, राज्य सरकारों के जो प्रथम पंक्ति में बॉर्डर्स पर कार्यरत कर्मचारी हैं, जिसमें बॉर्डर के जिलों के जिला अधिकारी, वहाँ के पुलिस निरीक्षक और अन्य जो पूरी व्यवस्था है बॉर्डर के जिलों पर जो राज्य सरकार ने स्थापित की हुई है, वो इसका दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ है भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें आयकर विभाग है, जिसमें नारकोटिक्स का पूरा व्यवस्था है। इस तरह के जो 15 से 20 प्रमुख निकाय हैं भारत सरकार के, जो आर्थिक अपराधों पर, नारकोटिक्स पर, फेक करेंसी पर निगाह रखते हैं, वो इसका तीसरा स्तंभ है। और अंततः इसका चौथा स्तंभ है जो वहाँ का समुदाय है, जो वहाँ के आम नागरिक हैं। ये शायद पहली बार भारत के, स्वतंत्र भारत के लगभग 75 से 80 वर्ष के इतिहास में एक ऐसी परिकल्पना को जन्म दिया गया है जिसके प्रणेता गृह मंत्रालय के माननीय मंत्री हमारे गृह मंत्री जी हैं। उनके आदर्श से ये परिकल्पना विकसित हुई है। और यहाँ मुझे इस परिकल्पना के बारे में बताते हुए इसलिए मुझे

हर्ष भी हो रहा है और ये प्रासंगिक भी है कि इस व्यवस्था को आत्मसात किया जाए सभी स्टेक होल्डर्स में और इसको ग्राउंड पर सुचारू रूप से उतारा जाए। इसका पहला जो बड़ी मीटिंग हुई थी वो SSB के ही तत्वाधान में भारत नेपाल बॉर्डर में बिहार के किशनगंज और लगे हुए जो ज़िले हैं उनको सम्मिलित करते हुए लगभग आज से 6 से 7 महीने पहले हुई थी। तो इस पूरी व्यवस्था जो कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ वर्षों में एक बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के रूप में उभरेगी, इसका जन्म SSB के ही कर्मभूमि में हुआ था और इसलिए इस पूरी व्यवस्था को आरंभ करने की जो बधाई है उसके पात्र SSB के महानिदेशक, उसके अधिकारीगण और उसके कर्मी हैं। उसके उपरांत इस व्यवस्था को और विकसित किया गया गुजरात के बॉर्डर्स पर, राजस्थान के बॉर्डर्स पर, त्रिपुरा के बॉर्डर पर और अंत में बंगाल के जो बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर्स हैं उनमें इसकी अंतिम बैठक लगभग आज से 1 महीने पहले हुई थी। इन्हीं बैठकों के क्रम में हम और जगह भी जाएंगे और जितने भी हमारे बॉर्डर ज़िले हैं उनके साथ वार्तालाप करके इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक ये नई पहल जो गृह मंत्रालय में आरंभ हुई है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में एक प्लानिंग है और इसमें SSB जो हमारी एक अहम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जो दूसरा विषय मैं SSB के बारे में आप सबके समक्ष रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अपने आप में एक अनोखा कार्य क्षेत्र है क्योंकि वहाँ जो हमारी सीमाएं हैं वो मित्र देशों से लगी हुई हैं, इसलिए वहाँ बाड़ लगाने का कोई प्राविधान नहीं है और बाड़ जो सुरक्षा प्रदान करता है उस सुरक्षा के बगैर SSB को उस सीमा को सुरक्षित रखना है। पिछले 2 वर्ष में मेरा जो अपना अनुभव रहा है सीमा सुरक्षा के विषय में वो ये है कि ये अपने आप में एक कठिनतम कार्य है। बिना किसी फिजिकल बैरियर के एक बॉर्डर को सेफ रखा जाए इसकी कल्पना शायद विश्व में बहुत कम जगह पर की गई है और एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि SSB ने पिछले कुछ वर्षों में इस बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार के नवाचार किए हैं जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं लेकिन जिनका प्रभाव लगभग लगभग उतना ही है जैसे कि वहाँ पे एक भौतिक बाड़ की व्यवस्था हो। इसमें डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा लेकिन फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से, रडार और CCTV के माध्यम से और अन्य प्रणालियों को विकसित करके आज SSB ये सुनिश्चित करता है कि नेपाल से और भूटान से जो भारत में आवागमन हो रहा है उस पर एक पैनी निगाह रखी जाए और किसी भी हालत में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई भी ऐसा तत्व जो भारत में किसी भी प्रकार का उपद्रव करने में के लिए यहाँ आ रहा हो उसको हम बॉर्डर पे ही उसको रोक सकें और उसको वहीं पे अपनी गिरफ्त में ले सकें। इसमें सफलताएं भी मिली हैं और अभी हाल में ही गृह मंत्री जी सिलीगुड़ी गए थे, वहाँ SSB ने एक विस्तृत उनके समक्ष प्रस्तुति भी की थी और उसके माध्यम से बताया था कि मानव तस्करों से लेके FICN के स्मगलर से लेके नारकोटिक्स और आर्म्स के जो नेटवर्क्स हैं उन तक SSB ने अपनी पकड़ मजबूत करी है और एक हमें एक कॉन्फिडेंस भी मिला और एक इस बात का सामने प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिला कि SSB के प्रयासों के चलते आज नेपाल और भूटान से जो भारत की सीमाएं हैं वो काफ़ी हद तक हमने सुरक्षित कर ली हैं। अंत में SSB की उभरती भूमिकाओं के बारे में जो मंत्रालय का एक विजन है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा।

0: जैसा कि महानिदेशक महोदय ने बताया, एसएसबी का जब जन्म हुआ था 1961-62 के कालखंड में, तब उसका मुख्य ध्येय था बॉर्डर के गांव में एक भारत के प्रति एक सद्भाव पैदा करना, जो गांव के निवासी हैं उनके साथ मिलके एक आसूचना का सुदृढ़ तंत्र बनाना भारत के बॉर्डर्स पर, और जो बाकी अन्य आर्म्ड फोर्सेस हैं यूनियन की, उनकी मदद में इन दो तीन गतिविधियों के माध्यम से अपना सहयोग देना। धीरे धीरे ये जो व्यवस्था थी ये थोड़ी क्षीण होती गई और एसएसबी का रोल एक सशक्त और एक आर्म्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में अधिक होता गया, और जो ओरिजिनल रोल था कि सीमावर्ती गांवों के साथ मिलके वहाँ एक नेटवर्क बनाना, सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना, आसूचना के तंत्र को और सुदृढ़ करना, वो कहीं ना कहीं कम होता हमको दिखा है। तो अब आने वाले समय में मंत्रालय का ये मत है कि एसएसबी को अपना जो ओरिजिनल रोल था उस ओर फिर कदम उठाने चाहिए, जिससे कि जो इसकी मूल परिकल्पना थी उसके भी उसके भी निरूपण के लिए हम एक व्यवस्था बना सके। और जो आर्म्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का रोल है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके अतिरिक्त जो ओरिजिनल रोल था उस ओर भी हम अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ कर सके। तो हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान महानिदेशक के नेतृत्व में ये जो नई परिकल्पना विकसित हुई है, इस पर भी एसएसबी पूरे बल से और पूरे अपने मन से, अपने कार्यों से इस ओर भी काम करेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जाते जाते एसएसबी के अलंकरण समारोह में गृह मंत्रालय की ओर से फिर सभी एसएसबी कर्मियों को बधाई, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और उनको पूरा पूरा गृह मंत्रालय का सहयोग रहेगा आने वाले समय में, इसका आश्वासन देते हुए आप सभी को फिर से मैं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
1: That was the address by the Honorable Chief Guest, Shri Govind Mohan, the Central Home Secretary.
2: और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के ओजपूर्ण संबोधन के बाद अब मंच पर हम देखेंगे कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।
1: Now a memento will be presented to the Honorable Chief Guest by the Director General of the Sashastra Seema Bal. A memento is being given, and a beautiful one, a beautiful memento, a big one, and it's being shown to the public, the people over here.
2: और अब अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन होगा। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल पोडियम पर।
3: माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी, मंचासीन महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय सिंघल जी, आईजी ऑप्स श्री एमआर नायक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं अन्य संगठनों के महानिदेशक गण एवं वरिष्ठ अधिकारी गण, सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशक गण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथि गण, आज अलंकृत किए गए सशस्त्र सीमा बल के वीर एवं समर्पित पदक विजेता कार्मिक गण, मीडिया के प्रतिनिधि गण, देवियों एवं सज्जनों, आज सशस्त्र सीमा बल के इस अलंकरण समारोह के अवसर पर आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक एवं गौरवपूर्ण बना दिया है। सर्वप्रथम मैं आज की मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मान्यवर, आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच इस समारोह के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह

0: दर्शाया है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में समर्पित सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान एवं विश्वास अटूट है। सशस्त्र सीमा बल आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को हम सभी अपने कार्य एवं जीवन में आत्मसात करते हुए और अधिक निष्ठा, समर्पण एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मेरा विशेष आभार माननीय सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी के प्रति भी है, जिनका स्नेह एवं मार्गदर्शन सशस्त्र सीमा बल को सदैव मिलता रहा है। महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए अनेक धन्यवाद। मैं आज सम्मानित किए गए सभी पदक विजेताओं, उनके गौरवान्वित परिवारजनों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। इन पदकों के पीछे आपकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण एवं आपके परिवारों का त्याग और निरंतर सहयोग भी निहित है। मैं मीडिया के सभी उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से इस बल के कार्मिकों की उपलब्धियों एवं राष्ट्र सेवना की भावना को देशवासियों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। एक बार पुनः मंचासीन अति विशिष्ट अतिथिगणों एवं सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, पदक विजेताओं एवं उनके परिवारजनों को बल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद।
1: That was the vote of thanks by the Additional Director General of Sashastra Seema Bal.
2: और अब अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए सभी उपस्थित जन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो रहे हैं।
3: आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के उपरांत सभी लोग अपने आसन पर एक बार फिर विराजमान होते नजर आ रहे हैं। और जहां तक गणमान्य व्यक्तियों का प्रश्न है तो उनका प्रस्थान यहां पर शुरू हो गया है। गणमान्य व्यक्ति प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये अलंकरण समारोह अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। आज विज्ञान भवन में आयोजित ये सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह 2026 हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा एक सतत दायित्व है। सीमा पर तैनात जवान कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए अपना वर्तमान समर्पित करते हैं ताकि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रह सके। आज जिन अधिकारियों और जवानों को अलंकरण प्रदान किया गया उनकी वीरता, सेवा और समर्पण पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। इसी के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल SSB द्वारा आयोजित सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह संपन्न होता है। अब मैं अतहर सईद, अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू और OB प्रभारी विवेक कुमार तोमर और हमारी तकनीकी टीम के सदस्य अशोक कुमार मिश्रा और सुमित कटियार के साथ आपको आकाशवाणी स्टूडियोज वापस लिए चलता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार। नमस्कार, जय हिंद।
1: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सशस्त्र सीमा बल SSB के अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे अदर सईद और डी एंड्रयू।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में अभी आपने इंदीवर का लिखा गीत सुना। संगीतकार थे नदीम श्रवण। और लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू की आवाज़ में, और इस गीत को लिखा इंदीवर ने, संगीतकार जतिन ललित।

फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने आपके लिए लिया है फिल्म फरीब से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

यारा दिलदारा फिल्म का गीत दोस्तों अभी आपने सुना, आवाज़ें थीं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। प्रोग्राम का अगला गीत अलबेला फिल्म से, आवाज़ कुमार सानू।

0: फूल और कांटे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम दोस्तों अब यहीं संपन्न होता है। 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे करीब फिल्म के गीत, जिसे आपके लिए पेश करेंगी रिया प्रकाश। और अब वक्त हो गया है समाचारों का।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। सरकार ने बिना किसी शुल्क के आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। आयातकों को कच्ची चीनी की खरीद की तारीख से अधिकतम 2 महीने के भीतर इसे सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान AI-1121 अहमदाबाद से रवाना होगी। ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली

0: से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार इन परिसरों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक के चंद्राकर का आवास भी शामिल है। आकाशवाणी FM गोल्ड की आज 25वीं वर्षगांठ है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम सुविख्यात है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 137 अंक बढ़कर 77,094 पर, जबकि निफ्टी मामूली रूप से बढ़त लेकर 24,092 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today addressed the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. He called upon all member countries to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. He said there can be no place for double standards on terrorism. More from our correspondent.
2: Addressing the SCO summit, Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. He said, wars and conflicts are not a solution to any problem and all disputes should be resolved through dialogue and diplomacy. The Prime Minister said, India supports all efforts that connects markets, facilitate trade and open new avenues for development. However, he stressed that such efforts must fully respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. Addressing the summit, Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. Vikalp Shukla, Akashvani News, Bishkek.
1: India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of the current financial year, compared to 6.9% during the same period the previous year. Prime Minister Narendra Modi has said India's economic growth of 7.8% is a reflection of the hard work and collective resolve of 140 crore citizens. Sharing a video in a social media post today, Mr. Modi said India is progressing at a fast pace despite global problems like ongoing wars and instability since the COVID-19 pandemic.
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज सेड इंडिया हैज शोन दैट इट कैन एडजस्ट टू चेंजेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी विदाउट अलाउइंग इट्स ग्रोथ टू बी डीरेल्ड। In an interview, Ms. Sitharaman described India as a vibrant and responsive economy capable of managing external challenges. She also highlighted India's recorded growth of 7.8% in the first quarter of the 2026-27 financial year. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupinder Yadav today held a meeting with his German counterpart Carsten Schneider in New Delhi. The meeting was held on the sidelines of the 4th Indo-German Environment Forum. During the meeting, both sides had extensive discussion on matters related to industrial decarbonization and biodiversity conservation, with particular focus on wetland conservation. In a social media post, Mr. Yadav said the forum is opportune as the partnership between India and Germany continues to witness an unprecedented upward trajectory. Civil Aviation Minister

0: Sagar Ram Mohan Naidu will inaugurate the hub and spoke international flight operations at the Sardar Vallabh Bhai Patel International Airport in Ahmedabad this evening. The inaugural Easy Connect service, operated by Air India's flight AI-1121, will depart from Ahmedabad, carrying passengers connecting through Delhi to several global destinations. Rescue teams in Nepal are racing against time to reach more than 600 workers believed to be trapped in mud-filled tunnels at the Trishuli 3A hydropower site. Crews are using explosives, heavy machinery and air pumps to clear the tunnels and search for survivors. Meanwhile, the Indian Embassy in Kathmandu has shared details regarding the identification and repatriation of mortal remains of victims of the recent flash floods in Nepal. Akashvani's FM Gold is celebrating its 25th anniversary today, marking 25 years since its launch on September 1, 2001. Originally known as AIR FM2, the service was introduced as an infotainment channel combining news, current affairs and entertainment. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के 1:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट और दोस्त रिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता, आज जिस फिल्म के बारे में हम आपसे बात करेंगे, उस फिल्म का नाम है करीब। जी हाँ, करीब वर्ष 1998 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे विधु विनोद चोपड़ा जी ने निर्मित और निर्देशित किया था। इसके लेखक कामना चंद्र, अभिजीत जोशी और विधु विनोद चोपड़ा जी हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं बॉबी देओल, शबाना रजा जिसे नेहा के नाम से भी जाना जाता है, और मौसमी चैटर्जी। और सह कलाकार के रूप में जॉनी लिवर, अमित फालके, सुषमा सेठ, सौरव शुक्ला, शमी कपूर, विजेंद्र घाटगे और अभय चोपड़ा भी शामिल हैं। इसी बात पर आइए सुनते हैं फिल्म का पहला गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म करीब का टोटल बजट 6.50 करोड़ था, जबकि इसकी कुल कमाई 12.93 करोड़ की हुई थी। और फिल्म के संगीत की अगर बात करें तो इसे संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत राहत इंदौरी जी के लिखे थे। इस फिल्म के सारे गीत लोकप्रिय हुए और आज भी लोग इसे बेहद चाव से सुनते हैं। ये फिल्म बॉलीवुड की एक बेहद मासूम और खूबसूरत प्रेम कहानी मानी जाती है।

श्रोताओं, फिल्म करीब की कहानी की अगर बात करें तो फिल्म झूठ, प्रेम और पश्चाताप पर आधारित है। बिरजू यानी बॉबी देओल एक मस्त मौला और झूठ बोलने वाला लड़का है जो एक सीधी साधी लड़की नेहा यानी शबाना रजा से पहली नज़र में प्रेम कर बैठता है।

बिरजू नेहा को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के झूठ बोलता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों को प्रेम हो जाता है। जब नेहा को बिरजू के झूठ के बारे में सच्चाई पता चलती है तो वो अंदर से टूट जाती है। इसके बाद नेहा बिरजू से दूर चली जाती है। बाद में बिरजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एक सच्चा इंसान बनने का फैसला करता है। अंत में बिरजू का बदलाव देखते ही नेहा उसे माफ़ कर देती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं।

श्रोताओं, इस फिल्म के लिए बॉबी देओल को चुना गया था क्योंकि बॉबी देओल का लुक विधु विनोद चोपड़ा जी के हिसाब से उनके जवानी के दिनों से काफ़ी मिलता जुलता था। और फिल्म की मुख्य अभिनेत्री शबाना रजा ने बॉलीवुड में इस फिल्म से डेब्यू किया था और फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी ने उनका असली नाम बदलकर नेहा कर दिया था, जो फिल्म में उनके किरदार का भी नाम था।

0: श्रोताओं, फिल्म करीब में नेहा के किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद ममता कुलकर्णी थी, लेकिन बाद में इस रोल के लिए शबाना रजा को फाइनल किया गया। श्रोताओं, इस फिल्म के विजुअल्स काफ़ी खूबसूरत थे। फिल्म में पहाड़ी इलाकों और प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने के लिए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक स्थलों का चयन किया गया था।
1: ना दिन दिन्ना तक तक तुन्ना, ना दिन दिन्ना तक तक तुन्ना, ना दिन दिन्ना तक तक

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरें इस बुलेटिन में अमन देव पहला चौनिया खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें सम्मेलन में संबोधन किया है। श्री मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी बारे दोहरे मापदंड वाली कोई जगह नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक 7.8% की आर्थिक विकास दर 140 करोड़ देशवासियों की सख्त मेहनत तथा समूह संकल्प का नतीजा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था में होने वाली तब्दीलियों अनुसार अपने आप निकालने में योगदान का प्रदर्शन किया है। भारत ने सिंधु जल संधि बारे विश्व बैंक वालों नियुक्त साक्षी अदालत के फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया है कि देश में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के वर्तन को बढ़ाने के लिए केंद्रीय गोबर धन योजना कार्यक्रम लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें सम्मेलन को संबोधन किया। इस मौके पर उन्होंने सारे मेंबर देशों को दहशतगर्दी वित्त पोषण, दहशतगर्दा की परती, कट्टरपंथीकरण और सुरक्षित पनाहगाह की पूरी प्रणाली को खत्म करने का सद्दा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी के दोहरे मापदंड वाली कोई जगह नहीं हो सकती। श्री मोदी ने पश्चिमी एशिया समेत दुनिया के वक् वक् हिस्सों में चल रहे संघर्षों से भी चिंता प्रकट की थी।
2: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं।
1: उन्होंने कहा कि युद्ध के टकराव किसी भी समस्या का हल नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बाजारों में जोड़ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने और विकास के लिए नए राह खोलने वाले सारे यत्न का समर्थन करना है। हालांकि इन यत्नों में सारे देशों की प्रभुसत्ता के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना जरूरी है। ऐसे में मेंबर देशों के आगुओं ने संगठन की 25वीं वर्षगांठ मौके बिश्केक ऐलाननामे के लिए दस्तखत किए। मेंबर देशों ने संस्थागत ढांचे को बेहतर बनाने और सुरक्षा के आधुनिक खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से मतों के एक व्यापक पैकेज के भी दस्तखत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की आर्थिक विकास दर 140 करोड़ देशवासियों की सख्त मेहनत और समूहक संकल्प का नतीजा है। आज सोशल मीडिया से एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी चल रही जंगा और विश्वव्यापी अस्थिरता वर्गी चुनौतियों के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काउंट से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: आर्थिक विकास की इस गति में बनाए रखने लिए एक आत्मनिर्भर भारत की लोड़ है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को स्वदेशी को अपनाने, वोकल फॉर लोकल को उत्साहित करने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने की अपील की। श्री मोदी ने नागरिकों को बेलोड़ी विदेश यात्रा और विदेशों में विवाहों की योजना बनाने से गुरेज करने, जदों तक जरूरी न हो सोना न खरीदने की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रकट किया कि जेकर सारे नागरिक स्वदेशी को अपनाने की आदत बना लें तो आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक विकसित भारत हासिल करने का संकल्प पूरा किया जा सकेगा। वित्त और कारपोरेट मामलों बारे मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश की दरामद

0: रहना जरूरी है। अंतर के कौमियां खबर एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 6वें सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी बारे दोहरे मापदंडों में कोई थां नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के 7.8% के आर्थिक विकास हर 140 करोड़ देशवासियों की सख्त मेहनत और समूह संकल्प का नतीजा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था में होने वाली तब्दीलियों अनुसार अपने आप को ढालने की योग्यता का प्रदर्शन किया है। तो भारतीय सिंह जल संधि बारे विश्व बैंक वालों ने 1 साल अदालत के फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया है। इस खबर का बुलेटिन खत्म होता है। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम की 26वीं सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने और इस मामले पर दोहरा मियार अख्तियार करने की रविश तर्क किए जाने पर जोर दिया। भारतीय रेलवे ने शिमाली रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के बकिया 772 किलोमीटर के हिस्से पर कवच निज़ाम के चौथे मरहले के लिए 170 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल मुमताज़ नशरियाती खिदमात के 25 साल मुकम्मल होने पर आज अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मशरकी भारत के बाद हिस्सों में शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और यूएस ओपन टेनिस में अरीना सबालिंका ने केमिला ओसोरियो को हराकर अपने टाइटल का दिफा करने की मुहिम का आगाज कर दिया है। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम की 26वीं सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वजीर आजम ने मेंबर मुल्कों पर जोर दिया कि दहशतगर्दों को सरमाया फराहम करने, उनकी भर्ती, लोगों को शिद्दत पसंदी के रास्ते पर डालने और उन्हें महफूज पनागाहें फराहम करने के पूरे इको निज़ाम को ख़त्म किया जाए। जनाब मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के मामले पर किसी तरह के दोहरे मियार की कोई गुंजाइश नहीं है। शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के मेंबर मुल्कों के रहनुमाओं ने तंजीम के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर बिश्केक ऐलानिये पर दस्तखत किए। इसके अलावा मेंबर मुल्कों ने मुख्तलिफ करारदादों पर भी दस्तखत किए जिनका मकसद इदारा जाती फ्रेमवर्क को बेहतर बनाना और सिक्योरिटी को लाहिक जदीद तर्ज के खतरात से निमटना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: शंघाई ताउन तंजीम की सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी टकराव और लड़ाई के मामले पर तश्वीश का इजहार भी किया। जनाब मोदी ने कहा कि जंग और महाजाराई किसी मसले का हल नहीं है और सभी तनाज़ात बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि भारत उन सभी कोशिशों की हिमायत करता है जिनके जरिए मार्केट्स को बाहम मुंसलिक किया जाए, तिजारत में सहूलत पैदा हो और तरक्की के नए रास्ते खुलें। साथ ही उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि इस तरह की कोशिशें करते वक्त सभी मुल्कों के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत का पूरा एहतराम किया जाना चाहिए। सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले साल शंघाई ताउन तंजीम के तहजीबी मुजाकरात फोरम की तजवीज़ पेश की थी। वजीर आजम ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि इसका पहला इजलास इस साल भारत में होगा। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक हकीकी दानिशमंद शख्स वो होता है जिसके मंसूबे और इकदामात मुकम्मल होने तक दूसरों से पोशीदा रहें। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक डिसिप्लिन, साहबे बसीरत और सोच समझकर काम करने वाले शख्स को सही माना में दानिशमंद कहा जा सकता है। महकमे खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत ने यह दिखा दिया है कि अपनी तरक्की के मुतासिर हुए बगैर आलमी मईशत में होने वाली तब्दीलियों का सामना कर सकता है। साथ ही उन्होंने दरामद की जाने वाली तवानाई और कीमियावी खाद पर मुल्क के इनसार को भी तस्लीम किया। मुतरमा सीतारमन ने भारत को एक मुतहरिक और फौरी इकदाम करने वाली मईशत करार दिया जो बाहरी चैलेंजों से निमटने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि भारत खाम तेल और पेट्रोलियम अशिया दरामद करने वाले दुनिया के बड़े मुल्कों में शामिल है। वजीर खजाना ने इस बात को उजागर किया कि भारत ने दुनिया के हालात और वाकयात के तनाजुर में अपनी

0: as she looks to become only the third woman after Serena Williams and Chris Evert to win three straight US Opens. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses 26th SEO Summit, calls for an end to double standards on terrorism. Indian Railways approves 170 crore rupees for coverage 4.0 on the remaining 712 kilometer stretch of Moradabad Division Northern Railway. In Nepal, flood death toll reaches 987 following widespread devastation. Akashwani's FM Gold commemorates its silver jubilee today. IMD issues red alert for Chhattisgarh. Extremely heavy rainfall expected over parts of Jharkhand, Odisha and Northeast India till tomorrow. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
3: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ

0: भारत के लिए एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल SSB की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय SSB की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। SSB के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने SSB की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
3: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी

0: सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ AI समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में FM गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। FM गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई FM गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूदा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
5: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना इयात्सेन्को से होगा।

और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों

0: कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओ, इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और अब वक्त है आपके मनपसंद का सेगमेंट एक ही कलाकार का। इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओ, आज के जो हमारे कलाकार हैं वे ना सिर्फ उर्दू साहित्य के चार स्तंभों में से एक हैं बल्कि भारतीय सिनेमा के एक महान कथाकार, पठ कथा लेखक और निर्देशक भी है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम उन्हीं के गीतों को सुनवाएंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़ी कई सारी दिलचस्प बातें भी करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत और मुझे फटाफट से संदेश भेजिए कि हम किस कलाकार की बात कर रहे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और एक ही कलाकार में हमारे जो आज के कलाकार हैं वो हैं राजेंद्र सिंह बेदी जी। हाँ, अभी जो आपने गीत सुना सन 1970 में रिलीज हुई फिल्म दस्तक से, जिसमें उन्होंने बतौर निर्देशक के रूप में काम किया, और इस फिल्म के गीतों को आज भी सिनेमा का मास्टरपीस माना जाता है, जिसमें संजीव कुमार को स्थापित करने में बड़ी भूमिकाएं निभाई। बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, उनका जन्म पंजाब के सियालकोट जिले के ढल्लेवाली गांव में हुआ था। उनके माता पिता हीरा सिंह बेदी और सेवादाई थे। उन्होंने अपनी शुरुआती साल लाहौर में बिताए, जहां उन्होंने उर्दू में शिक्षा प्राप्त की, जैसे कि अधिकांश पंजाबी परिवारों में आम था। हालांकि उन्होंने कभी भी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की।

श्रोता, उनकी लघु कहानियों का पहला संग्रह है दान उदाम, जिसमें उनकी प्रमुख कहानी गरम कोट शामिल है, 1940 में प्रकाशित हुआ था। सन 1942 में उन्होंने लघु कहानियों को का अपना दूसरा संग्रह ग्रहण प्रकाशित किया। सन 1943 में उन्होंने एक छोटे फिल्म स्टूडियो महेश्वरी फिल्म्स में काम करना शुरू किया। हालांकि डेढ़ साल बाद वे ऑल इंडिया रेडियो लौट आए और उन्हें जम्मू में तैनात किया गया, जहां उन्होंने सन 1947 तक काम किया। विभाजन के समय तक राजेंद्र सिंह बेदी कई और लघु कथाएं प्रकाशित कर चुके थे और एक विपुल लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उनके उर्दू उपन्यास एक चादर मैली सी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद खुशवंत सिंह ने आई टेक दिस वुमेन के रूप में किया था, इसको सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। बाद में इस पुस्तक का हिंदी, कश्मीरी और बंगाली में अनुवाद भी किया गया।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं। चलिए उन संदेशों को पढ़ते हैं। हमारे पास जो पहला संदेश आया है वो आया है नितेश देवांगन का। इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग तेलर, पूना राम देवांगन, कृष्ण देवांगन, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है वो चंदू कुलकर्णी का है, और ये इनके साथ हैं दुर्गाई से, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं दुर्गाई सेलू से, और इनके साथ है सी आर कुलकर्णी। अगला जो संदेश है वो है ताज मोहम्मद का, इनके साथ है गुलाम साबिर राही, मिराज जहाँ, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। अगला जो संदेश है वो है तुलसी मस्कीन का, और इनके साथ है वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिदान खुराना। अगला जो संदेश है मोहम्मद कमर का है, और ये हमें लेकर भेज रहे हैं गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली, मुजफ्फर अली। अगला जो संदेश है अनिल मोहन का, इनके साथ है उषा मोहन, ये हमें लिख कर भेज रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। जो अगला संदेश आया है वो आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। धर्मेंद्र छीपा जी ने हमें अगला संदेश भेजा है, भोपालगढ़ राजस्थान से, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। फारूक अली खान का अगला संदेश है, और साथ ही हमें संदेश भेजा है वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। राधे श्याम देवांगन ने हमें संदेश भेजा है भवरपुर बसना से, और इनके साथ है चंपा देवांगन। फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ हैं ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।

बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों जैसे मधुमति, अभिमान, अनुपमा और सत्यकाम के बेहतरीन संवाद और पटकथा राजेंद्र सिंह बेदी ने ही लिखे थे। अगर कुछ उनकी व्यक्तिगत जीवन और आदतों के बारे में बात करें तो उन्हें मीठे पान का शौक बहुत था। बेदी जी को गुलाब की पंखुड़ियों वाले खास मीठे पान और तंबाकू वाले पान का बेहद शौक था। वे अपने पास आने वाले मेहमानों को भी ज़बरदस्ती पान खिलाते थे और उनके साथ घंटों लतीफ़े और कहानियां शेयर करते थे। एक बार की जो फिल्म बनी है, जो बेनाम फिल्म बनी है, वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार बेदी जी रास्ते से एक बीमार और लाचार व्यक्ति को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उनसे कहा, बेदी साहब आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, शायद इस आदमी की हत्या की गई और आप फंस जाएंगे। इसी सच्ची घटना को आधार बनाकर उनके बेटे नरेंद्र बेदी ने अमिताभ बच्चन स्टारर मशहूर सस्पेंस फिल्म बेनाम, जो कि 1974 में बनाई गई थी।

तो अगला संदेश आया दर्शन गौर का, ये हमें लिख कर भेज रहे हैं मेरठ से, और इनके साथ है कविता गौर। साथ ही जो अगला संदेश हुआ अनिल मोहन का है, हमें जो लिख कर भेज रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, इनके साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। अगला जो संदेश है वो है धर्मेंद्र चीपा का, इनके साथ है कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार। गुरमीत सिंह हमें लिख कर भेज रहे हैं साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से, अशोक कुमार सहगल, इंद्रभान सिंह हमें लिख कर भेज इनके साथ, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, चिरमिरी कुरासिया कालरी से। अगला जो संदेश है प्रकाश वर्मा में लिख कर भेज रहे हैं, इनके साथ है निखिल वर्मा और इनके अन्य सदस्य। संदीप मक्कर हमें लिख कर भेज रहे हैं, इनके साथ है ज्योति मक्कर, भरत मक्कर, कमल सहानी जालंधर से। और साथ ही जो अगला संदेश है प्रवीण हागोड़े का जी है, इनके साथ है योगिता हागोड़े, कुमारी प्रियाली, पार्थ हागोड़े, साथ ही इनके अन्य परिवार के सदस्य हमें लिख कर भेज रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोताओं भी आप सुन रहे थे मधुमती फिल्म का गीत मन्नटे और कोरस की और साथियों की आवाज़ों में। फिलहाल इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम आज के कलाकार यहीं पर समाप्त होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए विदा, लेकिन कहीं जाइए नहीं, अगले भी कार्यक्रम में मैं आपके साथ बनी रहूंगी। फिलहाल सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त दिन के 3 बजे हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का। इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त दीक्षा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की फिल्म बरसात की रात के एक गीत से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चौदहवीं का चांद फिल्म का ये गीत शमशाद बेगम की आवाज़ में। तो आइए गीतों का सिलसिला जारी रखते हैं और सुनते हैं अगला गीत लव इन शिमला फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोता, हमारे पास बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, और जो हमारे पास संदेश आया है वो है सुरेश राठौर का, मंजुला राठौर, विशाल निशा जो हमें लिखकर भेज रहे हैं, गांधीनगर गुजरात से। अगला संदेश है किशन सपकाल का, और इनके साथ है आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साइरा सपकाल, विशाल सपकाल, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं शास्त्री नगर बीड शहर से। अगला जो संदेश है वो है दिग्दर्शन गौर का, और इनके साथ है कविता गौर, ये हमें लिख कर भेज रहे हैं मेरठ से। तो श्रोताओं, चलिए आपको सुनवाती हूँ अगला गीत, आया सावन झूम के, फुंसी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और की आवाज़ों में।

आया सावन झूम से सुन रहे थे ये गीत आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म चंदा और बिजली से आशा भोसले की आवाज़ में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये मैटिनी मेलोडीज कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे ठीक दिन के 3 बजे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त दिन के 3:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: मुझको अपना बना गए हो तुम, दर्द की इंतहा से निकले थे, दर्द की इंतहा से निकले थे, रूबरू फिर से आ गए हो तुम। कितनी लाशें महक रही हैं यहाँ, सारी बस्ती जला गए हो तुम। कितनी लाशें महक रही हैं यहाँ, सारी बस्ती जला गए हो तुम। कि मुझको दुश्मन समझ रहे हो मियाँ, मुझको दुश्मन समझ रहे हो मियाँ, किसकी बातों में आ गए हो तुम। और ये शेर के हिजर की कैफियत का क्या कहिए, हिजर की कैफियत का क्या कहिए, ढल के अशकों में आ गए हो तुम। हिजर की कैफियत का क्या कहिए, ढल के अशकों में आ गए हो तुम। और ये आखिरी शेर, अब तो मैं नहीं हूँ तुम सा हूँ, अब तो मैं नहीं हूँ तुम सा हूँ, मुझ में ऐसे समा गए हो तुम। कितनी रातें जगा गए हो तुम, मुझको अपना बना गए हो तुम। और ये गज़ल समाअत फरमाए, तुम मेरी वफाओं का सिला क्यों नहीं देते, तुम मेरी वफाओं का सिला क्यों नहीं देते, बिछड़े हो तो फिर दिल से मिटा क्यों नहीं देते, तुम मेरी वफाओं का सिला क्यों नहीं देते, बिछड़े हो तो फिर दिल से मिटा क्यों नहीं देते। और ये शेर के, मैं सिर्फ इसी बात पे हैरान हूँ कब से, मैं सिर्फ इसी बात पे हैरान हूँ कब से, तुम दोस्त अगर हो तो दगा क्यों नहीं देते, मैं सिर्फ इसी बात पे हैरान हूँ कब से, तुम दोस्त अगर हो तो दगा क्यों नहीं देते। सूरज जो है मगरूर बुलंदी के सफ़र पर, सूरज जो है मगरूर बुलंदी के सफ़र पर, आई न सरे शाम दिखा क्यों नहीं देते। जीना मेरा इस दौर में दुश्वार हुआ है, जीना मेरा इस दौर में दुश्वार हुआ है, ए यार तो मरने की दवा क्यों नहीं देते, जीना मेरा इस दौर में दुश्वार हुआ है, ए यार तो मरने की दवा क्यों नहीं देते। तुम मेरी वफाओं का सिला क्यों नहीं देते, बिछड़े हो तो फिर दिल से मिटा क्यों नहीं देते। और ये गज़ल समाअत फरमाए, मतलब हाजिर है, बातिल का यूं तो कोई तरफदार भी नहीं, बातिल का यूं तो कोई तरफदार भी नहीं, हक बात ये कि हक से सरोकार भी नहीं, बातिल का यूं तो कोई तरफदार भी नहीं, हक बात ये कि हक से सरोकार भी नहीं, दुश्मन है मेरा भाई मगर इसके बावजूद, दुश्मन है मेरा भाई मगर इसके बावजूद, आंगन में अब तलक कोई दीवार भी नहीं। और ये शेर मुलाहिज़ा हो कि नौ उम्र की दिलों में है गुंजाइशें बहुत, नौ उम्र की दिलों में है गुंजाइशें बहुत, लेकिन मोहब्बतों में गिरफ्तार भी नहीं। कि अब होशमंद नहीं यहाँ मखमूर हैं सभी, अब होशमंद नहीं यहाँ मखमूर हैं सभी, भटकाना इनको राह से दुश्वार भी नहीं। और ये शेर ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि मिलते हैं जिस तरह से यहाँ शहर में हबीब, मिलते हैं जिस तरह से यहाँ शहर में हबीब, ऐसे तो मेरे गांव के अग्यार भी नहीं, मिलते हैं जिस तरह से यहाँ शहर में हबीब, ऐसे तो मेरे गांव के अग्यार भी नहीं, तू काट देता है क्यों सदा बात से मुझे, आखिर तेरी ज़बां में तो तलवार भी नहीं, बातिल का यूं तो कोई तरफदार भी नहीं, हक बात ये कि हक से सरोकार भी नहीं।
1: सामीन, अभी आप प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब नसीम अहमद ख़ान से उनका कलाम सुन रहे थे। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्स अदब। अब अपने मेज़बान मोहम्मद अली कमाल को आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

印度特里广播电台，听众朋友们，请收听扎吉辛格和吉特啊辛格唱的歌曲。

印度的里广播电台听众朋友们，现在我们播送印度著名的 news 歌手苏尼迪·约翰唱的歌曲，请各位欣赏。

印度的里广播电台听众朋友们，请收听获得36项印度电影节最佳女配音歌手阿卡·亚格尼唱的歌曲，请各位欣赏。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरे साथी प्रतीक आनंद।
2: नमस्कार
1: प्रतीक, सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं चाइना मास्टर्स बैडमिंटन से। और आज से चाइना मास्टर्स बैडमिंटन जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट हो रहा है, और बल्कि स्टार्ट हो चुका है, और 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक ये खेला जाएगा। शेंजेन चाइना का एक शहर है, वहाँ पर ये खेला जा रहा है। और ये वर्ल्ड टूर सुपर 750 टूर्नामेंट है, और टोटल प्राइस जो इसमें दिया जाएगा वो तकरीबन 1.25 मिलियन डॉलर्स US डॉलर्स की

इनामी राशि का वाला ये टूर्नामेंट है, और 1 और 2 सितंबर को पहले राउंड यानी कि राउंड ऑफ 32 के मुकाबले होंगे, उसके बाद 3 सितंबर से राउंड ऑफ 16 के मुकाबले होंगे, 4 सितंबर को क्वार्टर फाइनल्स, 5 को सेमीफाइनल्स और 6 सितंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और अभी तक जो

0: भारत के दूसरे जो खिलाड़ी हैं एमआर अर्जुन, ये दोनों खिलाड़ी चाइना की जोड़ी के साथ खेल रहे हैं और पहला जो सेट है वो कोर्ट नंबर 2 पे ये मुकाबला चल रहा है, राउंड ऑफ 32 का ये मुकाबला है। पहला सेट जो है वो 11-8 की बढ़त के साथ चाइनीज़ खिलाड़ी अभी आगे चल रहे हैं और जिस तरह से ये पूरा मुकाबला चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो साफ़ है कि ये जो टूर्नामेंट है चाइना मास्टर्स, ये अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और काफ़ी टफ भी है प्रतीक ये।
1: जी बिल्कुल।
0: और जिस तरह से अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो आगे आगे देखते हैं कि क्या क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल कोर्ट नंबर 2 पर भारतीय जोड़ी सामना कर रही है चीनी खिलाड़ियों का और लगातार हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अब रुख कर लेते हैं एशिया कप, महिला एशिया कप T20 का, और हमारे सहयोगी प्रतीक ने बहुत ही शानदार रिपोर्ट बनाई है, आइए सुनते हैं।
1: बात करते हैं क्रिकेट की। महिला एशिया कप 2026 में 31 अगस्त का दिन बांग्लादेश के नाम रहा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए ग्रुप बी के मुकाबले में बांग्लादेश ने इंडोनेशिया को 71 रनों से हराकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत। इस मुकाबले की खासियत सिर्फ बांग्लादेश की जीत नहीं थी बल्कि इंडोनेशिया के लिए यह महिला एशिया कप का पहला मुकाबला था, यानी इंडोनेशियाई महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक दिन। और उसी ऐतिहासिक शुरुआत के सामने बांग्लादेश ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। टॉस इंडोनेशिया की कप्तान नी नंदा सकर्णी ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बांग्लादेश की कप्तान निगर सुल्ताना की टीम शुरुआत में बहुत तेज गति से रन नहीं बनाए, लेकिन पारी के आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजों ने स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से सबसे बड़ी पारी शोभाना मोस्तारी ने खेली। उन्होंने 42 गेंदों में 40 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। इसके बाद शौर्ना अख्तर ने सिर्फ 18 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाकर पारी को तेज गति दी। शौर्ना की पारी में 3 चौके और 1 छक्का रहा और उनका स्ट्राइक रेट 172 से अधिक रहा। दिलारा अख्तर ने 31 गेंद पर 27 रन बनाए जबकि कप्तान निगर सुल्ताना ने 11 गेंदों में 10 रन जोड़े। इंडोनेशिया की गेंदबाजी में नी कदेक अरियानी और नी लोदेवी सबसे प्रभावी रही। दोनों ने 3-3 विकेट निकाले। अरियानी ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट हासिल किए जबकि देवी ने 3 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इंडोनेशिया ने बांग्लादेश को 129 रन तक सीमित रखा और एक समय मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बांग्लादेश की असली ताकत दूसरी पारी में सामने आई। 130 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडोनेशिया की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी। उसके बल्लेबाज बांग्लादेश की स्पिन और सटीक गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए। इंडोनेशिया की ओर से मारिया कोराजोन ने 13 गेंदों में 12 रन बनाए और वही टीम सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी रही। नीलू देवी और रहमावती पंगेस्तुती ने 9-9 रन बनाए लेकिन कोई भी बल्लेबाज पारी को संभाल नहीं सका। पूरी इंडोनेशियाई टीम 17.3 ओवर में 58 रन पर सिमट गई और बांग्लादेश ने मुकाबला 71 रन से जीत लिया। बांग्लादेश की जीत की सबसे बड़ी नायिका रही नाहिदा अख्तर। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मारूफा अख्तर ने भी 3 ओवर में केवल 6 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। सांजिदा अख्तर और फाहिमा खातून ने 1-1 विकेट निकाला। इस गेंदबाजी प्रदर्शन ने इंडोनेशिया की रन गति को पूरी तरह रोक दिया। बांग्लादेश के लिए यह जीत महत्वपूर्ण रही क्योंकि टीम 2018 में महिला एशिया कप का खिताब जीत चुकी है। उस ऐतिहासिक उपलब्धि के 8 साल बाद बांग्लादेश एक बार फिर महाद्वीपीय खिताब की दौड़ में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना चाहेगी।
0: और वहीं दूसरी ओर ये तो बात थी कल के मुकाबले की और आज जो मुकाबला खेला जाना है, प्रतीक क्या लगता है क्या होगा?
1: जी हाँ, आज पाकिस्तान और थाईलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह टूर्नामेंट का पहला मैच होगा। मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात करीब 8 बजे से शुरू होगा। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, थाईलैंड और हांगकांग के साथ हैं। पाकिस्तान की कप्तानी फातिमा सना करेंगी और उनके लिए यह मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद उसे 5 सितंबर को भारत और 7 सितंबर को हांगकांग का सामना भी करना है। इसलिए टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगा पाकिस्तान। अब बात कर लेते हैं अंक तालिका की। मौजूदा अंक तालिका में ग्रुप ए में भारत 1 मैच में 1 जीत के साथ 2 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। थाईलैंड 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 2 अंक लेकर दूसरे स्थान पर। ग्रुप बी में श्रीलंका 1 जीत में 2 अंक लेकर पहले स्थान पर हैं, वहीं बांग्लादेश भी 2 अंकों के साथ

0: दूसरे स्थान पर बना हुआ है।
1: और क्रिकेट की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब थोड़ा बात कर लेते हैं घरेलू क्रिकेट की। और घरेलू क्रिकेट में इस समय जिस तरह से DPL दिल्ली में खेली जा रही है, और DPL के साथ पहले तो DPL के जो मुकाबले थे लड़कों के, बॉयज़ के, पुरुषों के, वो तो पूरे हो चुके हैं। और उसको जीतने वाली टीम थी साउथ दिल्ली की, जो दिल्ली की टीम है, साउथ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम, वो जीत गई थी उसको। लेकिन अब बात आई है महिलाओं की, महिलाओं का आज मुकाबला खेला गया, उसमें नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम का मुकाबला था साउथ दिल्ली से। हालांकि फाइनल में भी यही दोनों टीमें हैं, तो एक तरह से फाइनल की रिहर्सल इसको कह सकते हैं। लेकिन आज के मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली ने बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं बनाया था, केवल 126 रन ही बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। और उसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था कप्तान जो नॉर्थ दिल्ली की हैं आयुषी सोनी ने, जिन्होंने 62 रन की पारी खेली 55 गेंदों पर, और उनका साथ निभाया अर्चना ने और आखिरी में समायरा राघव ने। इस स्कोर का पीछा करने जब साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम उतरी तो बहुत अच्छे से वो पारी को आगे नहीं बढ़ा सके, लगातार अंतराल पर उनकी विकेटें गिरती रहीं। और प्रिया पुनिया जिन्होंने एक बहुत बड़ी इनिंग खेली थी वो भी आज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकी, केवल 31 रन का योगदान ही उन्होंने टीम के लिए दिया। और कुल मिलाकर निर्धारित 20 ओवर्स में साउथ दिल्ली की टीम केवल 124 रन ही बना सकी 7 विकेट के नुकसान पर। और एक और मुकाबला अभी थोड़ी देर बाद ही शुरू होने वाला है महिलाओं का, वो हो रहा है सेंट्रल और ईस्ट दिल्ली की टीमों के बीच में। हालांकि ये सिर्फ औपचारिकता मात्र है, दोनों ही टीमें फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं और अब वो मुकाबला 7 बजे से खेला जाना है। और उसके बाद कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, DPL में महिला सेगमेंट का फाइनल मुकाबला होगा, जिसमें साउथ दिल्ली की और नॉर्थ दिल्ली की टीमें आमने सामने होंगी। वहीं घरेलू क्रिकेट की बात को और आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं दिलीप ट्रॉफी की।
0: जी हाँ, दिलीप ट्रॉफी में 2 सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं, जहां पहले सेमीफाइनल का नतीजा निकल कर आ चुका है। ईस्ट जोन ने सेंट्रल जोन को 4 विकेट से मात दे दी है। सेंट्रल जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 266 रन बनाए, जिसके जवाब में ईस्ट जोन ने भी 266 रन बनाए। उसके बाद सेंट्रल जोन ने अपनी दूसरी पारी में जोयाल की मदद से 46 रन की पारी की मदद से 158 रन बनाए, जो कि ज़्यादा कारगर नहीं साबित हो पाया। और ईस्ट जोन ने यह 159 रनों का टारगेट तीसरे दिन पूरा कर लिया, 162 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बात करें दूसरे सेमीफाइनल की, तो नॉर्थ जोन और साउथ जोन के बीच चल रहा यह मुकाबला, जहां नॉर्थ जोन पहली इनिंग में 195 रन बनाकर ऑल आउट हो गया, वहीं साउथ जोन ने अपनी पहली पारी में 312 रन बनाए। अब नॉर्थ जोन दूसरी पारी में 256 रन 7 विकेट के नुकसान पर खेल रहा है। दिन के अंत तक
1: बहुत अच्छी बात है इस समय जिस तरह से दिलीप ट्रॉफी के मुकाबले चल रहे हैं। और दिलीप ट्रॉफी वो टूर्नामेंट है जहां से हमारे जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं वो टेस्ट मैच की टीम के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं, और दावेदारी तो पेश कर रहे हैं US ओपन में भी। टेनिस के सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या कुछ इसमें होता है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो चुका है, ये बताएंगे प्रतीक।
0: न्यूयॉर्क की रात, हजारों दर्शकों की गूंज और दुनिया के सबसे बड़े टेनिस मंच पर हर अंक के साथ बदलती कहानी। US ओपन के पहले दौर का दूसरा दिन ऐसा रहा जिसमें एक तरफ चैंपियनों ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की, तो दूसरी तरफ कुछ बड़े नामों के लिए न्यूयॉर्क का सफर पहले ही पड़ाव पर खत्म हो गया। 2026 का US ओपन न्यूयॉर्क के फ्लशिंग मीडोज स्थित USTA बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर के हार्ड कोर्ट पर खेला जा रहा है। पुरुष और महिला एकल का पहला दौर 30 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा, जबकि पुरुष और महिला युगल प्रतियोगिताओं का पहला दौर 3 और 4 सितंबर से शुरू होगा। आइए नजर डालते हैं कल खेले गए कुछ मुकाबलों पर। पुरुष एकल में सबसे बड़ी खबर रही दूसरी वरीयता प्राप्त और गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज की वापसी। 4 महीने से अधिक समय तक कलाई की चोट के कारण प्रतिस्पर्धी टेनिस से दूर रहने के बाद स्पेनिश खिलाड़ी ने रोमन सफियुलिन को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। आर्थर एश स्टेडियम में अल्काराज ने शुरुआत से ही बेसलाइन पर नियंत्रण रखा और तीनों सेट में सफियुलिन को वापसी का मौका नहीं दिया। मैच के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अल्काराज ने अपनी कलाई को लेकर कोई बड़ी परेशानी महसूस नहीं की। 139 दिनों के अंतराल के बाद ग्रैंड स्लैम कोर्ट पर उनकी यह वापसी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपने खिताब की रक्षा करने उतरे हैं। दिन के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम

में देखने को मिला। पूर्व विश्व नंबर 3 स्टेफेनोस सिटसिपास ने 10वीं वरीयता प्राप्त और हाल में सिनसिनाटी चैंपियन बने आर्थर फिल्स को 4-6, 7-6, 6-1, 6-4 से हराया। फिल्स ने पहला सेट जीतकर और दूसरे सेट में बढ़त बनाकर मैच पर पकड़ बना ली थी, लेकिन सिटसिपास ने शानदार वापसी की। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमरीकी हार्ड कोर्ट सत्र में सिटसिपास का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। इसके अलावा अन्य मुकाबलों में फेलिक्स ओजे अलियासिमे ने रिकी हाजिकाता को 7-5, 4-6, 6-3, 7-5 से हराया, जबकि दूसरी ओर मटेओ बेरेटिनी ने स्टैन वावरिंका को 7-6, 7-6, 6-0 से हराकर स्विस दिग्गज के ग्रैंड स्लैम करियर का अंत कर दिया। वावरिंका 41 वर्ष के हैं और 2016 में यूएस ओपन के चैंपियन रहे थे। न्यूयॉर्क में उनका यह 18वां यूएस ओपन था। 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले वावरिंका के लिए यह मुकाबला परिणाम से कहीं ज्यादा विदाई का क्षण बन गया। बात करते हैं महिला एकल की। महिला एकल में गत विजेता और विश्व नंबर 1 आर्याना साबलंका ने कमीला ओसोरियो को 6-2, 6-4 से हराकर अपने लगातार तीसरे यूएस ओपन खिताब की ओर पहला कदम बढ़ाया। साबलंका 2024 और 2025 में न्यूयॉर्क की चैंपियन रही हैं और इस जीत के साथ उन्होंने अपनी खिताबी रक्षा की शुरुआत कर दी है। अगर वह इस बार भी चैंपियन बनती हैं तो यूएस ओपन महिला एकल में लगातार 3 खिताब जीतने वाली खिलाड़ियों की ऐतिहासिक सूची में अपना नाम ऊपर ले जाएंगी। महिला वर्ग में ही इगा श्वेतक ने भी चीन की वांग शियू को सीधे सेटों में हराया। 8वीं वरीयता प्राप्त श्वेतक ने 6-2, 6-3 से जीत दर्ज की और इसी के साथ उन्होंने लगातार 8वीं बार यूएस ओपन का पहला दौर जीता। इस उपलब्धि ने उन्हें सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स और किम क्लाइस्टर्स की लगातार 8 पहली दौर की जीत की उपलब्धि के बराबर ला खड़ा किया। श्वेतक का अगला मुकाबला नादिया पोडोरोस्का से होगा। एक अन्य मैच में नाओमी ओसाका ने भी बेहद कड़े मुकाबले में अनस्तासिया जाखारोव को 7-6, 7-6 से हराया। दोनों सेट टाई ब्रेक तक गए और ओसाका ने महत्वपूर्ण मौकों पर अपना धैर्य बनाए रखा। 2 बार की यूएस ओपन चैंपियन ओसाका के लिए यह जीत वापसी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 10वीं वरीयता प्राप्त और पिछले वर्ष की उप विजेता अमांडा अनिसिमोवा ने अपने 25वें जन्मदिन पर शानदार प्रदर्शन करते हुए एशलिन क्रूगर को 6-1, 6-3 से हराया। करोलिना मुकोवा और विंबलडन चैंपियन लिंडा नोस्कोवा ने भी दूसरे दौर में जगह बनाई। वहीं टेलर टाउनसेंड ने भी 20वीं वरीयता प्राप्त माजा हॉलिंस्का को 6-2, 6-3 से हराकर उलटफेर किया। अब एक नजर डालते हैं आज खेले जाने वाले मुकाबलों पर। आज 22वीं वरीयता प्राप्त मेडिसन कीज और युवा अलीना कॉर्नेवा के बीच मुकाबला होगा। इसके बाद 9वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के टेलर फ्रिट्स का मुकाबला वाइल्ड कार्ड डार्विन ब्लांच से होगा। शाम के सत्र में घरेलू दर्शकों के सामने सबसे बड़ी उम्मीदों के साथ कोको गॉफ आएंगी, जिनका सामना जेनेप टॉनमेज से होगा। इसके बाद पुरुषों में शीर्ष वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वरेव लोरेंजो सोनेगो के खिलाफ खेलते दिखेंगे। इसके अलावा 5वीं वरीयता प्राप्त रोलेंड गैरो चैंपियन मीरा आंद्रीवा का सामना इंडोनेशिया की चेनिस जेन से होगा। साथ ही पुरुषों में 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी फ्लाविओ कबोली फ्रांसिस्को कोमेसेना से भिड़ेंगे। महिला वर्ग में 17वीं वरीयता प्राप्त फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला का मुकाबला

0: और दूसरे के जो हमारे मोटे अनाज हैं या श्री अन्न है, अगर हमारे किसान भाई इनकी खेती भी करते हैं, इनमें कोई ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती है,
1: जी
0: न इनको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है, कम
1: जी
0: लागत में हो सकते हैं और दूसरी फसलों के साथ भी इनको उगाया जा सकता है।
1: जी आपने ये जो बात कही कि किसान भाई हमारे अब बहुत ज्यादा मिलेट्स को भी उगाना शुरू कर रहे हैं, ये उगाते थे मगर खरीदारी नहीं थी इसकी। सबसे
0: जी
1: बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे किसान भाई अगर उगा भी दें तो खरीदारी नहीं थी। अब किसान भाइयों को कहीं ना कहीं तो वो फसल बेचनी है, अगर अपने लिए उगा लिया तो ठीक है मगर बेचने के लिए तो कोई खरीदार चाहिए होता है।
0: जी
1: तो अब नॉर्थ साइड में जितना भी हमारा, साउथ साइड में ऑलरेडी मिलेट्स बहुत उगता है और बहुत ज्यादा अवेयरनेस डबल हो गई है वहां पर, मगर हमारे नॉर्थ साइड में जितने भी किसान भाई बहन हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी कि हम ऑलरेडी बहुत सारे किसानों के साथ इसको उगा रहे हैं और उगाने के बाद खरीदारी भी करा रहे हैं और बिकने में भी हम मदद कराते हैं। उसके साथ साथ प्रोसेसिंग भी हमारी जो यहाँ नॉर्थ में है अवेलेबल है, उससे आप मदद ले सकते हैं। और किसान भाई बहन सिर्फ वही नहीं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के भी बेच सकते हैं मार्केट में। तो अगर व्यवसाय एंगल से देखा जाए तो किसान भाई जो उगा रहे हैं उसको डायरेक्ट ना करके उसका वैल्यू एडेड भी सामान मार्केट में बेच सकते हैं, उसकी भी उपलब्धता है। और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, गवर्नमेंट की बहुत स्कीमें हैं जिसका वो यूज भी कर सकते हैं।
0: और जो श्री अन्न को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है?
1: श्री अन्न के लिए आप अगर फार्मिंग साइड में हैं तो वहाँ पे भी इसके अंदर सब्सिडीज हैं। अगर कोई उद्यमी है, अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं तो बहुत सारे अलग अलग विकल्प हैं। मशीन खरीदने के विकल्प अलग हैं, जो स्कीम्स अलग हैं। अगर लोन लेना है वर्किंग कैपिटल के लिए वो अलग है। उद्यमी को अगर शुरू करना है पैकेजिंग साइड में, अगर इसको पैक करके कुछ सामान आगे भेजना है तो उसके लिए भी, एजुकेशन साइड में भी बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम्स खोले हुए हैं, उन्होंने एजुकेशन के लिए वीडियोस बनाई हुई हैं। तो सीखने के लिए, करने के लिए बहुत

0: कुछ है, मगर बस एक जज्बा चाहिए। आप घर से भी छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हैं, मशीन्स भी बहुत छोटी छोटी अवेलेबल हैं आजकल, और उसको करने के बाद आप मार्केट अगर ढूंढें तो मार्केट के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत जगह स्टॉल देती है, उसके
1: मेले
0: साथ
1: लगाते
0: मेले भी
1: हैं।
0: लगाते हैं, और आपको हो सकता है गवर्नमेंट्स के अंदर खरीदारी भी होती है, प्लेटफॉर्म जैसे ONDC वगैरह प्लेटफॉर्म्स
1: जी
0: हैं वो भी बनाए हुए हैं, तो करने के लिए बहुत कुछ है, बस एक
1: आपको जागरूक
0: आइडिया।
1: होने की ज़रूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी बिल्कुल, शुभांगी सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और निश्चित तौर पे आपने श्री अन्न के बारे में काफ़ी कुछ बताया कि किस तरीके से इससे पोषण सुरक्षा की जा सकती है। आपका
0: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आपने सुनी ये बातचीत, शुभांगी सिंह से शिवेंद्र लाल की बातचीत थी और विषय था पोषण सुरक्षा हेतु श्रीयन। चलिए अब वक्त है मनोरंजन का और करवाते हैं आपका मनोरंजन, सुनते हैं जयवीर सिंह से एक।

0: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे श्री अन्न के बारे में, मोटे अनाज के बारे में, कि जो हमारा मोटा अनाज है वो हमारे भोजन को पौष्टिक और विविध बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन पोषण की बात और हमारी किशोरियों का जिक्र ना हो तो ये चर्चा अधूरी रह जाती है। आरती बहन,
1: बिल्कुल सही कहा शीतल आपने। किशोर अवस्था जीवन का वे महत्वपूर्ण चरण होता है जब शरीर में तेजी से शारीरिक और जो मानसिक है वो विकास होता है, और इस दौरान शरीर को ऊर्जा और प्रोटीन, विटामिन, जितने भी जो मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है।
0: जी बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण तत्वों में से है आयरन, यानी कि लौह तत्व, जिससे हमारे शरीर को जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
1: सही कहा, क्योंकि देखिए आयरन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो भी बढ़ता है।
0: जी बिल्कुल, और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुँचाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है।
1: तो चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर आगे, और अब आपको सुनवाते हैं एक और रागनी आशु की आवाज़ में।

0: सुन रहे थे बबीता को। और देखिए, वाकई सच में कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए आयरन की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे आप गीत सुन रहे थे, जब देखिए जच्चा बच्चा की बात होती है शीतल बहन, तब भी जो भी हमारी महिलाएं हैं उनको उस समय पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर पहले से चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसका
1: असर
0: हर्जाना
1: आने
0: भुगतना
1: वाले
0: पड़ता
1: बच्चों को भी
0: है।
1: पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा आरती बहन। और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम
0: राम राम।
1: राम।
0: प्रस्तुत करता थे कार्यक्रम के तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में दर्ज प्राथमिकियां भी रद्द कर

दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के चिन्हित 100 जिलों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर बल दिया है। कनाडा में हिंदू विश्वबंधु कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और उपासना पद्धतियों का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि ये विविधता ही हमारी एकता का आधार है। अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, मेरे साथ में है
4: नीलम वर्मा
3: और आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। नीलम जी, आज आधुनिकता की दौड़ में मानव खुद की परवाह किए बिना दिन रात सब कुछ भुलाकर बस दौड़ता चला जा रहा है।

0: इस दौड़ में दौड़ना गलत नहीं है, बल्कि सबको समय के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आधुनिकता के नाम पर खुद के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना गलत है। इसीलिए भारतीय समाज स्वस्थ रहे और आने वाली पीढ़ियां निरोगी रहें, क्योंकि स्वस्थ पोषण ही पीढ़ियों के स्वास्थ्य का आधार होता है। इस बात को जानते हुए भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। पोषण के प्रति ये जागरूकता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर के प्रथम सप्ताह में चलाया जाता है, इसी कारण इसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कहा जाता है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है क्योंकि आज है 1 सितंबर।
1: बिल्कुल, हर वर्ष भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर माह के पहले सप्ताह यानी कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। हर वर्ष इस सप्ताह का उद्देश्य अधिकाधिक लोगों को पोषण के प्रति राष्ट्रीय मंच से जागरूक करना होता है, और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह एक ऐसा माध्यम है जो आपको जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है।
0: और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मुख्य उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के समाज में पोषण के प्रति जन जागरण करना होता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनकी बेहतरी में उचित पोषण के महत्व की जानकारी को प्रदान करवाना होता है।
1: बिल्कुल, और पोषण युक्त आहार को देकर और इसकी जानकारी प्रदान करवाकर नागरिकों को मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। भारत सरकार एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मानव शरीर में उचित पोषण के महत्व और कार्य पर जोर देकर नागरिकों को अच्छा जीवन प्रदान करना होता है।
0: तो कहने का मतलब यह है कि पोषण सप्ताह का उद्देश्य यही होता है कि आप पोषण के प्रति जागरूक रहें, और खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, अक्सर उनमें खून की कमी देखी जाती है, तो वो अपने पोषण का जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ नीलम जी, हमारे जो किसान भाई हैं वो भी पूरे देश के पोषण का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस समय जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में धान की फसल उगाई होगी, उससे हमें चावल मिलता है, तो वो पोषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे किसान भाइयों की जो धान की फसल है वो अच्छी हो, और इस समय उनको क्या कुछ समसमय कार्य करने चाहिए, कैसे देखभाल करनी चाहिए ताकि वो देश में पोषण की भरपाई में सहयोग करें, तो इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। तो सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: धन्यवाद, और सभी किसान भाई और बहनों को भी मेरा नमस्कार। हम सकुशल हैं और आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो भी सकुशल होंगे।
0: बिल्कुल, और हमको भी उनकी फसल की चिंता होती है, तभी तो आज आपको कार्यक्रम में आमंत्रित किया है कि ताकि हमारे जो किसान भाइयों की धान की फसल है वो अच्छी रहे। तो अगर डॉक्टर साहब हम बात करें इस समय की, तो क्या स्थिति है धान की फसल की?
2: इस समय धान चाहे आपने रोपाई विधि से लगाया हो, चाहे आपने सीधी बिजाई की हो, दोनों ही परिस्थिति में धान अब जननिक अवस्था की तरफ अग्रसर है। किसान भाइयों, धान की दो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। एक वानस्पतिक अवस्था होती है जब इसमें ब्यांत बनता है, कल्ले बनते हैं, और फिर इसमें जो है वो पौधों की लंबाई बढ़ती है। ब्यांत पूरा होने के बाद धान की फसल तुरंत अपनी जननिक अवस्था की तरफ शुरू होती है, यानी बाल बननी उसमें शुरू हो जाती हैं। किसान भाइयों, जब आप निकली हुई बाल देखते हैं उसके एक महीना पहले पौधे के अंदर बाल बनना शुरू हो जाती है। ये सारी की सारी जननिक अवस्था कहलाती है, और जिस दिन बाल निकलती है, जैसे ही बाल निकलती है तुरंत उसमें फूल भी बनने लगते हैं, यानी फूल उसके खिल जाते हैं और उसमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसी अवस्था में इस समय आपकी फसल है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, धान की जो फसल होती है उसको पानी की आवश्यकता होती है, तो किस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं अपनी धान की फसल में जल का प्रबंधन करें?
2: देखिए, देश के बहुत बड़े तबके में, बहुत बड़े क्षेत्र में धान की फसल को उगाया जाता है। वर्तमान आंकड़ों को देखें हम तो 50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्रों में धान उगाया जाता है, और देश का ऐसा कोई राज्य या भाग नहीं है जिसमें धान नहीं उगाया जाता। और अच्छी बात यह है कि कुछ भागों को छोड़कर ज़्यादातर भागों में जहाँ धान उगाया जाता है वहाँ पे बहुत अच्छी बरसात हुई है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिंचाई की धान में इस समय आपको कम आवश्यकता होगी अगर आपकी बरसात अच्छी हुई है तो। हाँ, अगर कहीं पे ज़्यादा बरसात होगी, बाढ़ आ गई, तो वहाँ धान से आपको पानी को निकालना पड़ेगा। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया कि धान अब जननिक अवस्था में, तो भाइयों बहनों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इस समय पर धान की फसल

0: पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर पानी हर समय हमारे धान की फसल में होना चाहिए। एक दिन के लिए भी पानी या 2 दिन के लिए भी पानी नहीं होगा तो उसका हमारी फसल की पैदावार पर उल्टा असर होगा। तो अतः इस दिशा में आप ध्यान रखें, आवश्यकता अनुसार समय समय पर अपने खेत में पानी बनाए रखें, कम से कम छिछला पानी आप उसमें बनाए रखें।
1: बिल्कुल, तो किसान मित्रों आप ज़रूर ध्यान दें इस बात पर कि आपको जल का प्रबंधन ठीक तरह से धान की फसल के लिए करना है। डॉक्टर साहब, फसल कोई भी हो, खरपतवार आते ही आते हैं
0: जी,
1: तो उनका नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है, तो कैसे कर सकते हैं?
0: जी, जो ये अवस्था है, आज की अवस्था है धान की, जो ज़्यादातर जन्निक अवस्था है, इस अवस्था पे खरपतवार पहले ही किसान भाई नियंत्रित कर लेते हैं। और अगर इस समय भी किसी किसान भाई के खेत में खरपतवार हैं तो इस समय पे कोई भी खरपतवार नाशी दवाई नहीं है जो धान की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण कर सके। अगर इस अवस्था पे आपके खरपतवार आते हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती के हों चाहे संकरी पत्तियों के हों, उनको आपको निकाई द्वारा हाथ से ही आपको उनको उखाड़ के बाहर खेत के फेंकना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
1: बिल्कुल, तो इस तरह से किसान मित्रों आप अपने धान की फसल से जो खरपतवार हैं उनको उखाड़ के फेंक सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे खरपतवार आते हैं तो फसलों में रोग कीट भी आते हैं, तो
0: जी
1: इस वक्त तो जो अभी आपने जो अवस्था बताई है धान की फसल की, तो कौन कौन से कीट के आने की संभावना होती है और क्या हानि वो पहुँचाते हैं?
0: निश्चित तौर पे इस समय पे कीटों की अगर हम बात करें तो तना छेदक एक कीट होता है, वो तो हर साल आता ही है धान में, और वो अवस्था को नहीं देखता, वो वनस्पति की अवस्था में भी आता है और जब बालियां निकलती हैं तब भी आता है। इसी तरीके से पत्ती लपेटक कीट है, ये भी कभी भी आ सकता है, खास करके शुरुआती अवस्था में काफ़ी आता है। तीसरा महत्वपूर्ण कीट है धान का, जो भूरा फुदका कहते हैं, ब्राउन प्लांट होपर। ये भूरे फुदके होते हैं, ये पौधे के तने पे बैठते हैं नीचे और फसल को नुकसान कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे चल के जब आपके दाने में दूध बनेगा, अभी तो शायद वो अवस्था नहीं आई है, तब आपके गंधी कीट भी आ सकता है। इसके अलावा और कई सारे कीट हैं जो धान की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात यही है कि आपको देखना है कि कहीं आपकी धान की फसल को इन कीटों द्वारा नुकसान तो नहीं हो रहा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि खेत में आप जाएं सुबह या शाम और अपनी फसल को गौर से देखें और पौधों को हिलाएं, कहीं कोई कीड़े मकोड़े आपको उड़ते तैरते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आप तुरंत उनका समाधान करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बात की थी तना छेदक कीट की और पत्ती लपेटक कीट की, तो किस प्रकार ये फसल को हानि पहुंचाते हैं और इनकी रोकथाम वो कैसे की जा सकती है?
0: जी, ये दोनों कीट लगभग साथ साथ ही धान की फसल में आते हैं। और पहले हम तना छेदक की बात करते हैं। इसकी जो सूंडी या इल्ली होती है वो जमीन की सतह से पौधे के तने में घुस जाती है, धान के तने में घुस जाती है और अंदर के पदार्थों को खाती रहती है। तो ऊपर की जो बीज की पत्तियां होती हैं वो भूरी होकर सूख जाती हैं, इसको हम मृत केंद्र कहते हैं, डेड हर्ट्स कहते हैं। इसके अलावा अगर तना छेदक बाली अवस्था पर आता है तो ये सूंडी अंदर ही अंदर बाली को काट देती है, और फिर आप अगर इस तरह की बाली को देखेंगे तो उसका रंग सफ़ेद हो जाएगा, उसमें दाने नहीं भरेंगे, खाली उसमें जो है दाने दिखाई देंगे आपको और बाली का रंग सफ़ेद होगा। कुछ किसान भाई इसको सफ़ेद बाली रोग भी कहते हैं, हालांकि ये रोग नहीं है, कीट द्वारा हानि होती है। इस तरह की बाली को आप जब खींचेंगे तो बड़ी आसानी से वो खींच जाती है और इससे पैदावार में काफ़ी हानि होती है। और आपने दूसरा सवाल पूछा कि भाई ये पत्ती लपेटक क्या करता है, तो इसकी भी सूंडी नुकसान करती है। ये करती क्या है, पत्ते पे पहुंच जाती है और पत्ते को जो किनारे होते हैं दोनों तरफ से उनको सिल देती है और अंदर एक सुरंग सी बना लेती है, इसको लीफ रोलर भी कहा जाता है, और अंदर से ये क्लोरोफिल को खा जाता है। किसान भाइयों, आपकी फसल के जो पत्ते हैं वो सफ़ेद रंग के हो सकते हैं, और इसकी अवस्था अगर ज़्यादा उग्र हो जाए, बहुत ज़्यादा इसका हमला हो जाए, तो पूरा खेत हमें ऐसे दिखाई देगा जैसे चूने से किसी ने पुताई कर दी हो, जगह जगह आपको सफ़ेद पत्ते दिखाई देंगे। तो ये इन दोनों कीटों के लक्षण हैं, इनकी रोकथाम भी एक जैसी है, दोनों को मतलब एक दवाई से आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान से सुने, कार्बाफ्यूरान 3 CG है, ये CG, जो जी है उस पर बैन लग गया है, लेकिन कार्बाफ्यूरान 3 CG जो है बाजार में मिलती है, इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुरक सकते हैं, छिड़क सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा ग्रेनुल होता है, दानेदार दवाई होती है, जिसको कार्टअप हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, इसकी 4G मात्रा होती है, 4% ग्रेनुल आते हैं, दाने आते हैं, इसका आप बुरकाव कर सकते हैं। इसकी मात्रा भी लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास है। इसके अलावा क्लोरपारीफास दवाई आती है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं।

0: इसके लिए 2 ग्राम क्लोर पायरीफास आती है, प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से इन कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, कीटों के नियंत्रण करने के लिए आपने जो दवाइयां बताई हैं, छिड़काव के बारे में आप बता रहे हैं, तो किस समय छिड़काव करना चाहिए ताकि उसका असर सही तरह से हो फसल
0: जी
1: पर?
0: बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि इस समय पे बरसात भी होती रहती है। तो अगर हमारी छिड़कने वाली दवाई है, अगर हम पर्णीय छिड़काव कर रहे हैं, यानी हम स्प्रेयर मशीन से छिड़काव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमें मौसम की जानकारी लेना चाहिए। अगर हमें पता है 4 घंटे बाद बरसात होगी, तो इस तरह के छिड़काव को आप टाल दें। जब आपको मौसम साफ दिखाई दे और उम्मीद हो कि अगले 6-7 घंटे बरसात नहीं होनी, तब आप इस तरह की दवाई का छिड़काव करें। दूसरी तरफ मैंने दानेदार दवाई जैसे आपको बताई है, इनमें खास ध्यान यही रखना कि खेत में ज़्यादा पानी ना भरा हो और ज़्यादा बारिश की संभावना ना हो, छिछला पानी हो, हल्का पानी हो, तब ये दानेदार दवाई ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि इनकी मात्रा थोड़ी कम होती है। तो इसमें आप रेत में मिला के आप इस तरह के दानेदार दवाइयों को अपने खेत में बुरक सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दवाई अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगा रहे हैं, खास करके कीट नियंत्रण की, तो अपने स्वास्थ्य का उस समय किस तरह से ध्यान रखना उनको आवश्यक है?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसान भाई जब भी इन दवाइयों का छिड़काव करें, प्रयोग करें, तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले अपनी आपको आँखों को बचाना है, इसके लिए आप एक चश्मा लगाएं, आपके सर में बालों में एक टोपा या कोई इस तरह की चीज़ ओढ़ें, और आपके अपने चेहरे को भी बचाएं, हाथों में दस्ताने हों, आपके ग्लव्स हों। आप कोशिश करें कि ये पदार्थ जो अब आप प्रयोग में लाते हैं खेत में, तो आपके शरीर पे ना आए, आपके किसी अंग में ना जाए। जो किसान भाई, हालांकि बीड़ी वाड़ी नहीं पीनी चाहिए आदमी को, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, फिर भी कोई किसान अगर इस तरह के कार्य को करता है, तो आपको छिड़कने के बाद तुरंत बीड़ी ना पिए, अपने मुंह पे अपनी उंगलियों को ना लगाएं, इससे भी आपको हानि हो सकती है। और साथ ही साथ मौसम का आपको ध्यान रखना है, और ये जो इसकी पैकिंग होती है, जो डब्बे होते हैं या पैकिंग होती है, उसको खेत के आसपास ना रखें, खेत से दूर ले जाके उनको नष्ट कर दें। और अगर घर में आप इस तरीके की जहरीली दवाई रखते हैं, तो उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और किसी कारणवश अगर आप इस दवाओं को सांस में ले लेते हैं या किसी तरीके से निगल जाते हैं, खा लेते हैं, तो तुरंत किसी चिकित्सक से आप संपर्क करें और अपना इलाज कराएं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, और इसी बात से एक बात जोड़ते हुए मैं एक और जानकारी आपसे चाहूँगा कि जो भी हमारे किसान मित्र अपने खेतों के लिए दवाइयाँ खरीदते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो या रोगों के लिए खरीदते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? कई बार नकली दवा भी आ जाती है।
0: जी बिल्कुल, देखिए अभी कई बार किसान भाई सवाल करते हैं, भाई मैंने खरपतवार नाशी डाला, कीटनाशी डाला, तो असर नहीं हुआ। किसान भाइयों, आजकल बाजार में बहुत नकली दवाएं, नकली चीज़ें मिल रही हैं। पहली बात तो ये कि आपको किसी दुकानदार पर निर्भर नहीं होना है। आप दुकानदार को समस्या कुछ बताएंगे, वो दवाई कुछ दे देगा। पहली बात तो दवाई का चयन ही गलत हो जाता है, और दूसरी बात वहाँ पे संभावना होती है कि आपको नकली दवाई मिल जाए। थोड़ी महंगी ज़रूर मिलेगी, लेकिन अच्छी कंपनी की आप दवाई लें। और जो दूसरा प्रमुख हिस्सा है वो ये है कि आप रसीद जरूर लें, पक्की रसीद लें। आजकल हर दवाई के डिब्बे पर नंबर होता है, उसका उससे पहचान हो सकती है कि वाकई ये कंपनी ने बनाई है, उसकी जाँच की जा सकती है, और QR कोड वगैरह से स्कैन करके उसका सारा डिटेल हम पता कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एक्सपायरी डेट देखें, उस पर कहीं उसकी म्याद तो ख़त्म नहीं हो गई है दवाई की। कई बार ऐसा होता है कि दवाई हमारी की म्याद ख़त्म होगी, एक्सपायरी होगी, और फिर हम उसको प्रयोग में लाते हैं, तो वो प्रभावी नहीं होती, इसका ध्यान रखें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने बताई कीटों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, और बात वर्तमान समय की करी रहे, तो इस समय क्या जो सूत्रकृमि होते हैं वो भी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं?
0: जी हाँ, सूत्रकृमि किसान भाइयों क्या होते हैं, छोटे छोटे सूत्र के आकार के कीड़े होते हैं, नन्हे नन्हे कीड़े होते हैं, जैसे कि धागा होता है सफ़ेद रंग का, और ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, और कई बार ये धान की जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ प्रवेश करने के बाद ये अपनी बढ़वार करते हैं, और धान की जड़ों में सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, और ये जब गांठें बनती हैं तो पौधा हमारा पोषक तत्वों को नहीं ले पाता, यहाँ तक कि पानी को भी नहीं ले पाता। ये खास करके उन दशाओं में आता है जब हमने धान की सीधी बिजाई की हो, या खेत में पानी का प्रबंधन कम हो, पानी कम लगाया हो हमने। अब क्या होता है, निमेटोड या सूत्रकृमि जब जड़ में गांठें बना लेते हैं, तो पौधे की बढ़वार रुक जाती है, उसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं, और कई बार तो उस पर बालियां नहीं आती। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, आप कार्बाफ्यूरान का तुरंत प्रयोग करें, और जांच पहले करें, हर पौधे को उखाड़ के देखें, कुछ पौधों को, और अगर उसमें जड़ों में गांठें दिखाई दें, तो आप कार्बाफ्यूरान 3 सी जी इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से बुरक दें, या फिर आप 250 किलोग्राम नीम की खली नीम की खली प्रति हेक्टर का भी प्रयोग कर सकते।

0: सकते हैं, इससे निमेटोड रुकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कीटों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी और सूत्रकृमि के बारे में आपने बताई। अब बात करते हैं रोगों के बारे में
0: जी।
1: तो कौन कौन से रोग आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है इस मौसम में, किस तरह से उन पर नियंत्रण किया जा सकता है?
0: जी देखिए, इस समय पे चार रोग या पांच रोग प्रमुख होते हैं, जैसे कि एक ब्लास्ट होता है, बदरा रोग होता है, वो आ सकता है। दूसरा शीत ब्लाइट, जिसको हम आवरण झुलसा कहते हैं। तीसरा हमारा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी जीवाणु पत्ती झुलसा हो सकता है। और एक हमारा फाल्स स्मट या आभासी कंड होता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर बकानी रोग के आने की भी संभावना रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब, किस तरह से हमारे किसान भाई इन रोगों को पहचानें और किस तरह से वो उनका जो उपचार करें?
0: जी बिल्कुल, जैसे रोग, जैसे ब्लास्ट रोग होता है, बदरा रोग कहा जाता है। इसमें क्या होता है बदरा रोग में, कि धान के पौधों पर आग के आकार के धब्बे बन जाते हैं और ये धब्बे फिर बढ़ते जाते हैं और पूरी पत्ती को भूरा रंग कर देते हैं। इससे काफ़ी नुकसान होता है। और ये जो रोग है, बदरा रोग है या ब्लास्ट रोग है, ये धान के कई भागों में आता है। कई बार नोड पे आ जाता है, जो गांठें होती हैं धान के तने पे, उस पे भी आ जाता है, पत्तों पे भी आ जाता है, यहाँ तक कि धान की जो ग्रीवा होती है, जिसको हम गर्दन कहते हैं, धान की बाली का वो भाग जो तने से जुड़ता है उसको गर्दन कहा जाता है, जैसे हमारी गर्दन होती है। इस पे भी कवक का आक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से बाली सड़ सी जाती है वहाँ से और टूट के लटक जाती है। किसान भाइयों, कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि शाम को किसान ने देखा कि खेत ठीक है और जब वो सुबह अपने खेत में गए तो उन्होंने देखा कि 20-30% तक बालियाँ अपने स्थान से लटक जाती हैं। लटक जाती है यानी उस पर कवक का हमला हो चुका है। तो इस तरह के जो नेक ब्लास्ट है या गर्दन तोड़ किसान भाई कहते हैं, इसके इलाज के लिए आपको क्या करना है, एक मिक्सचर आता है जो हमारे कवकनाशी होते हैं, उसमें एजोक्सी स्ट्रोबिन, ध्यान से सुने, एजोक्सी स्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल, ये जो दो दवाइयों का मिश्रण आता है, और इसकी 500 मिलीलीटर या सिर्फ आधा लीटर मात्रा लेनी है और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़क दें, तो आपका ये नियंत्रण हो जाता है इसका रोग का, नेक ब्लास्ट का। इसके लिए साथ ही आप बावेस्टीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कार्बेंडाजिम कहते हैं, या प्रोपेकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल का भी प्रयोग किया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जीवाणु पत्ती अंगमारी कई बार हमारी जो धान की फसल है उसको काफ़ी नुकसान करता है, इसके लक्षण और कंट्रोल के बारे में आप किसान भाइयों को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, और मेरी अभी कुछ दिनों पहले कुछ किसानों भाइयों से बातचीत भी हुई थी, तो कई जगह मध्य भारत में खास करके इस बार जो जीवाणु पत्ती झुलसा है वो आ रहा है और उसके आने की संभावना है। किसान भाइयों, पहले आपको इसके लक्षण पहचानने, लक्षण पहचानने के लिए सबसे पहले ये होता है कि पौधे की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, पौधे के जो किनारे होते हैं, पत्तों के जो किनारे होते हैं, नोक से पीलापन शुरू होता है, और जो मार्जिन होते हैं, जो पत्ती के दोनों किनारे होते हैं, इसमें लंबे लंबे लहरदार पीले रंग की जो है पट्टियाँ सी बन जाती हैं, और फिर ये पट्टियाँ बड़ी होकर पूरा पत्ता भी पीला हो सकता है, पत्ता हमारा सूख सकता है, धान के कई पत्ते एक साथ सूख जाते हैं, कई बार तो पूरे की पूरी फसल हमारी नष्ट हो सकती है। इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो सबसे पहले आप जांच कराएं कृषि विज्ञान केंद्र से या विश्वविद्यालय से कि कहीं ये रोग जीवाणु पत्ती झुलसा तो नहीं है। अगर ये कन्फर्म हो जाए तब तुरंत इस रोग का आप इलाज करें। इसके लिए यहाँ से हम ये सुझाव देते हैं कि आप एक मिक्सचर होता है बना बनाया, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, ध्यान से सुने, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 9% होता है, और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ये 1% होता है, और इसके अलावा आपके कापर ऑक्सीक्लोराइड, सो ये मिश्रण बना बनाया आता है तीन दवाइयों का, मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इस मिश्रण की आप 2 ग्राम मात्रा लें और प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप छिड़क दें। अगर ये रोग आपके खेत में फिर भी दिखाई देता है तो आप इस छिड़काव को दोहराएं। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि इस खेत से, जो प्रभावित खेत है, इससे पानी का जो बहाव है वो स्वस्थ खेत में ना जाने दें, क्योंकि ये पानी के माध्यम से दूसरे खेतों में रोग फैलता है। और दूसरी बात यह कि नाइट्रोजन का प्रयोग आपको कम से कम करना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, धान की फसल में इस समय जो आभासी कंड है वो भी अक्सर दिखाई देते हैं फसल जी में जी। आ जाते हैं, तो इसके लक्षण और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?
0: जो फाल्स स्मट है किसान भाइयों, इसको हल्दी गांठ रोग भी आप लोग कहते हैं, हिंदी में इसे आभासी कंड कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब दाने निकलते हैं और दाने में दूध बन रहा होता है, तो उस समय दाने के अंदर जो कवक होता है, एक खास प्रकार का कवक होता है, उसके बीजाणु बनने शुरू हो जाते हैं और वो धान के दाने को पीला रंग कहते हैं, इसलिए आप हल्दी गांठ कहते हैं। दाना फूल जाता है, 2-2.5 गुना हो जाता है, शुरू में वो दाना पीले रंग का दिखाई देगा या ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, फिर ये काले रंग का हो जाता है।

0: इससे धान की गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित होती है, उसकी क्वालिटी में गिरावट आती है। हालांकि पैदावार पे कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आप पहचान पाते हैं इस रोग को तब तक काफ़ी देरी हो चुकी होती है, क्योंकि इसका जो बीजाणु है, इसका जो फाइफा है फंगस का, वो पौधे के अंदर पहले से ही मौजूद रहता है, सिर्फ आखिर में दिखाई देता है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप कापर ऑक्सी क्लोराइड, ध्यान से सुने, कापर ऑक्सी क्लोराइड, इसकी 1.25 किलोग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर तुरंत छिड़क दें तो इस रोग का नियंत्रण काफ़ी हद तक आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई जिनकी धान की फसल लगी हुई है खेतों में, किन किन बातों का ध्यान दें, किस तरह से अपनी फसल की देखभाल करें ताकि उनको अच्छी पैदावार मिले।
0: निश्चित तौर पे अगर आपने अभी भी नाइट्रोजन की खुराक नहीं दी है, धान आपने पछेती लगाया था, तो जो तीसरी और अंतिम खुराक है धान की, वो जरूर उसमें लगा दें। प्राय ये गाभे पे लगाई जाती है जब उसमें पेनिकल का बनना, जो बाली का बनना पौधे के अंदर शुरू हो जाता है। उचित जल प्रबंधन करना है, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, जननिक अवस्था है, इसमें आपको खेत में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी हमेशा रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अपनी फसल की लगातार निगरानी आपको करते रहना है, खेत में आते जाते रहना है, और समस्या ध्यान से आपको देखनी है। अगर कोई समस्या दिखाई दे तो उसका आप वैज्ञानिकों से सलाह लें, और जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से सलाह लें, और दुकानदार से आप सलाह ना लें, मेरा ये मानना है, और फिर आप उसका उपचार करें, उसका निदान करें। तो आशा करता हूँ कि अगर इन बातों पर आप ध्यान रखोगे तो धान की अच्छी पैदावार आप ले पाओगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपकी बातों का हमारे जो किसान भाई हैं ज़रूर ध्यान रखेंगे, उसी तरीके से अपने फसल में समसमय कार्य करेंगे, देखभाल करेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे हैं?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: और अब नीलम जी, हमारे किसान बहन भाई इंतजार कर रहे होंगे मौसम आधारित कृषि सलाह का, ताकि वो उसके अनुसार अपने कृषि कार्य हैं उनको अच्छे से संपन्न कर पाएं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार आप किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है। इसीलिए आप किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौध के निचले भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करें।
5: और इस समय धान की फसल मुख्यतः वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है, अतः फसल में कीटों की निगरानी करें।
1: और इस मौसम में आप किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि स्वीट कॉर्न यानी कि माधुरी बिन ऑरेंज और बेबी कॉर्न की बुवाई मेड़ों पर करें।
5: और इस मौसम में टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार है, तो इस मौसम को मद्देनजर रखते हुए पौधों की रोपाई मेड़ों पर करें।
1: कद्दू वर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की बेलों को गलने से बचाया जा सके।
5: और कद्दू वर्गीय एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं, इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें। कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें और सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें।
1: तो किसान भाइयों, ये तो थी मौसम आधारित कृषि सलाह। और अब श्रोताओं, आपको बताते हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी का फल सब्जी का भाव। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करें सब्जी की, तो आलू बिका 12 रुपए प्रति किलोग्राम, प्याज बिकी 25 रुपए प्रति किलोग्राम, टमाटर बिका 25 रुपए प्रति किलोग्राम, बैंगन बिका 17 रुपए प्रति किलोग्राम और खीरा बिका 22 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर हम भिंडी की बात करें तो वो बिकी 40 रुपए प्रति किलोग्राम, मटर बिकी 75 रुपए प्रति किलोग्राम और तोरई बिकी 19 रुपए प्रति किलोग्राम।
5: और अब बात करते हैं फलों के भाव की, तो सेब बिका 90

0: प्रति किलोग्राम, केला बिका 20 रुपए प्रति किलोग्राम, अमरूद का भाव रहा 45 रुपए प्रति किलोग्राम और मौसमी बिकी 29 रुपए प्रति किलोग्राम, पपीता बिका 23 रुपए प्रति किलोग्राम और तरबूज बिका 15 रुपए प्रति किलोग्राम।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना फल सब्जी का भाव, और देखिए अब नीलम जी घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने श्रोताओं से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। शाम के 7:35 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं गजलों पर केंद्रित ये कार्यक्रम।

बताओ, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में ये गज़ल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और मीडियम वेव 366.3 मीटर पर आप हमें सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और आखिरी गज़ल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में आज दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के द्वितीय संशोधन को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी शुरुआती खर्च के मिलेगा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा विधानसभा परिसर में अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच नीट पेपर लीक के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली को 1000 मीट्रिक टन प्याज आवंटित करने का फैसला लिया और दिल्ली यातायात पुलिस ने मोटर कारकेड रिहर्सल के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी करते हुए बताया कि कल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के द्वितीय संशोधन को मंजूरी दी गई। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अंतर्गत 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी शुरुआती खर्च के मिलेगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार इसे पूरी तरह से इंस्टॉल करके देगी और उपभोक्ताओं से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।
3: सोलर रूफ सिस्टम जो है पूरी तरीके से सरकार द्वारा बिना किसी राशि लिए लगाया जाएगा। ये ऐतिहासिक होगा, जिसके लिए हमने टारगेट लिया है कि 2,30,000 हाउस होल्ड पर ये रूफ टॉप सोलर प्लांट पूरी तरीके से मुफ्त उसमें लगाया जाएगा।
2: मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली पर मिलने वाले मौजूदा सब्सिडी जारी रहेगी, जिससे परिवारों को सब्सिडी के फायदे और सोलर पावर से होने वाली बचत दोनों का लाभ मिल सकेगा।
3: हमारा टारगेट हाई है, हमने दिल्ली की जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन सभी पे ऑलरेडी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का काम जारी है और वेंडर जो है इसमें पहले 5 सालों तक फ्री O&M देगा। हमारा फोकस जो है लॉन्ग टर्म इफेक्टिव फंक्शनिंग

0: पे है रेजिडेंशियल सोलर नेट मीटरिंग प्रोसेस से, जो पहले प्रोसेस होता था 75 दिन का, उसको भी हमने घटा के 25 दिन पे ले आए हैं, ताकि इस सारे प्रोसेस को एक्सपीडाइट हम कर सकें।
1: इस अवसर पर दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुफ्त बिजली का इस्तेमाल राजनीतिक डर फैलाने के लिए किया, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार इसे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और परिवारों के सशक्तिकरण का माध्यम बना रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज राजधानी के यशोभूमि में भारत इलेक्ट्रिसिटी पावर जेन इंडिया और इंडियन यूटिलिटी वीक के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि ये कार्यक्रम देश के ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लचीलापन तथा विकसित भारत के विजन पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा परिसर में एक अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों को इस ऐतिहासिक स्थल के समृद्ध इतिहास, संवैधानिक विरासत और स्थापत्य धरोहर को जानने समझने का अवसर प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट।
2: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सचिवालय के युवा संपर्क कार्यक्रम के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए जानकारी दी कि परिसर को आम जनता के लिए शैक्षिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित संग्रहालय में दुर्लभ ऐतिहासिक कलाकृतियों, अभिलेखीय दस्तावेजों और आजादी से पूर्व तथा आजादी के बाद विधानसभा के विकास क्रम को दर्शाने वाली संवादात्मक प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया जाएगा। वर्ष 1912 में निर्मित इस ऐतिहासिक स्थल के कुछ हिस्सों को सुव्यवस्थित और विषय वस्तु आधारित सार्वजनिक स्थान के रूप में विकसित कर सचिवालय का उद्देश्य आगंतुकों को राष्ट्र के विधायी अतीत के महत्वपूर्ण और आधारभूत पड़ावों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इन मामलों में आगे जाँच न करने का आदेश दिया है।
3: न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम के दायर आवेदनों में उल्लेखित छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। न्यायालय के अनुसार यह आदेश उन विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया है जो सद्भावना के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 से 25 जुलाई के बीच प्रदर्शन की घटनाओं से जुड़ी कोई नई प्राथमिकी दर्ज न करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में मौजूद 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी, जिन पर पहले से ही संगीन आपराधिक मामले हैं। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा के रद्द होने के कारण आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए 3 महीने के भीतर एक नीति बनाई जाएगी। पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी का बयान भी दर्ज किया, जिसमें पार्टी ने इस महीने की 5 तारीख को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा की थी। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: केंद्र सरकार ने राजधानी में प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली को 1000 मीट्रिक टन प्याज आवंटित करने का फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत उचित मूल्य वाली दुकानों के जरिए ग्राहकों को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज मिलेगा। इसके अलावा सभी 13 जिलों में उचित मूल्य की दुकानों और वैन के माध्यम से भी प्याज बेचा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्याज की उपलब्धता और कीमतों पर कड़ी नजर रख रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि राजधानी में किसी भी हाल में प्याज की कमी ना हो और लोगों को जरूरी खाने पीने की चीजें सही कीमत पर मिलती रहें। इस बीच देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज प्रमुख बाजारों में भेजा जा रहा है। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल

0: से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों के से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली नगर निगम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा आयोजित नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि राजधानी में हर दिन भारी मात्रा में कचरा निकलता है, इसलिए नए 4 बिन सिस्टम यानी 4 डिब्बे वाली व्यवस्था के जरिए कचरे को स्रोत पर ही अलग करने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से कचरे को डंपिंग साइट पर फेंकने की सोच को बदलकर कचरे से संपदा बनाने की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम के मध्य और बाहरी उत्तर क्षेत्र की टीमों ने अपने अपने उपायुक्त की अगुवाई में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को मजबूत करने और पहचाने गए हॉटस्पॉट पर आगे की कार्रवाई के लिए मिलकर एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली नगर निगम ने बताया कि इस दौरान मिलकर प्लानिंग करने, असरदार तरीके से काम लागू करने और साफ हवा तथा सेहतमंद शहरी माहौल के लिए लगातार कोशिशें करने पर चर्चा की गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कल नई दिल्ली में प्रवर्तन कार्यबल ETF की 138वीं बैठक आयोजित की। इस बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण और नियमों के पालन की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि 16 दिनों की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने प्रमुख क्षेत्रों में 121 निरीक्षण किए। आयोग ने निर्धारित मानदंडों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन को मजबूत करने, समय पर जांच करने और काम करने वाली एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने पर बल दिया। आयोग ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए औद्योगिक इकाइयों, निर्माण तथा विकास कार्यों, डीजल जनरेटर सेट और सड़क निर्माण कार्यों सहित सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में त्वरित परिवर्तन कार्रवाई, सख्त अनुपालन निगरानी और निरंतर निरीक्षण पर विशेष बल दिया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बस चलाने वाले सभी ऑपरेटर्स के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यातायात विभाग से जारी निर्देशों के अंतर्गत यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्धारित सुरक्षा मानक और संचालन संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अंतर्गत बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड किट रखना जरूरी है। इसके अलावा सभी बसों में अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार किट का अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। साथ ही बस ड्राइवर और स्टाफ के लिए शराब तथा नशीले पदार्थों का सेवन कर गाड़ी चलाना सख्त मना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्तों और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर तथा मैनपुरी के पुलिस अधीक्षकों को ग्रेटर नोएडा से बस में सवार हुई एक लड़की के साथ चालक और कंडक्टर द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के मामले में नोटिस जारी किया है। ये घटना पिछले महीने की 4 तारीख को हुई थी। आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जांच की स्थिति और पीड़िता को दिए गए मुआवजे का विवरण शामिल हो। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये नोटिस जारी किए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने आज बताया कि डॉक्टर RP सेंटर फॉर ऑप्थाल्मिक साइंसेज के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय नेत्र बैंक ने पिछले साल 2200 से ज्यादा कॉर्निया दान किए, जिनमें से लगभग 82% कॉर्निया का इस्तेमाल किया गया। 41वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर RP सेंटर की प्रमुख डॉक्टर राधिका टंडन ने कहा कि सेंटर का इस्तेमाल दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है।
2: ऑलमोस्ट 1700 पेशेंट्स को कॉर्निया ट्रांसप्लांट मिला है। ये देश का सबसे ज्यादा है, क्योंकि नेशनल एवरेज है अबाउट 50% यूटिलाइजेशन, क्योंकि हम रेफरल सेंटर है और हम आधुनिक तरीके से ऑपरेशन करते हैं, प्लस हमारे पास फुल रेंज ऑफ पेशेंट्स होते हैं, उनके बीमारी के अनुसार ट्रांसप्लांट

0: होता है।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में कल आयोजित होने वाले मोटर कारकेड रिहर्सल के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि कल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित रहेगा, जिनमें सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और बाराखंबा रोड सहित अन्य सटे मार्ग शामिल हैं। यातायात पुलिस ने यात्रियों, विशेषकर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और अस्पताल जाने वालों को यात्रा से पहले योजना बनाने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। साथ ही वाहन चालकों से यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने और संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की अपील की गई है। यात्री संबंधित यातायात अधिक जानकारी दिल्ली यातायात पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में आज दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के द्वितीय संशोधन को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी शुरुआती खर्च के मिलेगा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा विधानसभा परिसर में अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच नीट पेपर लीक के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया और दिल्ली यातायात पुलिस ने मोटर कारकेड रिहर्सल के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मालिका में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूँ। रात्रि के 8 बजे हैं स्टूडियो की घड़ी के अकॉर्डिंग और रहेंगे आपके साथ लगभग लगभग पूरे 45 मिनट तक। फिलहाल हमें कार्यक्रम की शुरुआत करनी होगी एक खूबसूरत गीत के साथ और फिर लौट कर आते हैं, करेंगे ढेर सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने गीत सुना फिल्म खामोशियाँ से ही अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इस गीत को लिखा रश्मि सिंह ने और संगीत दिया जीत गांगुली ने। आप जुड़े हुए कार्यक्रम गीत मालिका से, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त चेतना। रोज़मर्रा की भागदौड़ ज़िंदगी में जहाँ हर तरफ शोर है, ट्रैफिक की आवाज़, फ़ोन की घंटियाँ और काम की ढेर सारी जिम्मेदारियाँ, आज हम एक अलग सफ़र पर निकलने वाले हैं दोस्तों। एक ऐसा सफ़र जहाँ पर शब्द कम है और एहसास ज़्यादा है। आज की हमारी महफिल सजी है जी आवाज़ के नाम, जो सुनाई नहीं देती है लेकिन सबसे ज़्यादा समझ में आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खामोशी की। और किसी ने खूब ही कहा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, और कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता। तो लगभग हम आधे घंटे से ज़्यादा के सफ़र पर निकलेंगे और खामोशी के सन्नाटे में कुछ गीतों का आनंद लेंगे, और सुकून से बैठकर हम खामोश भी रहेंगे और गीतों का मज़ा भी उठाएंगे।

जी हाँ दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि खामोशी भी गुनगुनाने लगती है? जी हाँ, वो भी बोलने लगती है। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है आपके जहन में खामोशी का नाम सुनते ही? एक खामोशी वो भी होती है जो दो पुराने दोस्तों के बीच में होती है, जहाँ कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भाई हम इशारों से ही समझ जाते हैं सारी बातें। एक खामोशी वो होती है जब दो प्रेमी आपस में बात करते हैं, वही इशारों की बातें। और एक खामोशी वो भी होती है हमें जो किसी पहाड़ को देखकर फील होती है, या फिर किसी समुद्र के किनारे खड़े होकर फील होती है, जहाँ हम खुद से मिलते हैं। एक वो भी खामोशी होती है, और कहा जाए कि वो भी एक बातचीत भी हो सकती है। तो खामोशी की जो है ना, वो परिभाषा बहुत अलग-अलग है। और किसी ने ठीक ही लिखा है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं।

जी हाँ दोस्तों, रूप कुमार राठौर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना और खामोशी की बात चल रही है। भाई खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप और मैं चुप हो जाएं, जी नहीं, खामोशी जो है ना वो कहीं ना कहीं आपस में बात ज़रूर करती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब हम एकदम से शांत बैठ जाते हैं तो हमें अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। हमें धड़कन सुनाई देने के साथ साथ हमारी सांसों की

0: आवाज़ हमारे कानों तक जाती है। यही खामोशी की सबसे बड़ी ताकत है कि कोई भी शोर नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके अंदर से एक आवाज़ जो आपके कानों तक जाती है वो आती है।
1: चुप हम रहे।
0: आज की डिजिटल दुनिया में जहाँ हमारे हाथ में हर वक्त फ़ोन रहता है, हर वक्त हमारे दिमाग में सैकड़ों विचार घूमते रहते हैं, लेकिन अपने लिए एक साइलेंट टाइम आप ज़रूर निकालिए। आंखें बंद कीजिए और कोई आपके आसपास स्क्रीन ना हो, कोई भी आपके हाथ में फ़ोन गैजेट ना हो, खामोशी को सुनिए, देखिए।

जी हाँ, बेखुदी को बेखुदी से बात करने दो। MM करीम और चित्रा सिंह की आवाज़ में अभी आपने गीत को सुना, बेहद बेहद खूबसूरत। और इस गीत को लिखा निदा फाजली ने, संगीत दिया MM करीम ने ही। और फिल्म की बात करें तो इस रात की सुबह नहीं आएगी, जी हाँ ये रही फिल्म। और खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती, बल्कि ये एहसास की है गहराइयों का। जब अगली बार आपको किसी बात का जवाब न सूझे ना, जब आपको कोई बात समझ में ना आए, तो मुस्कुराइए और खामोश हो जाइए। कभी कभी बहुत अच्छा सा जवाब मिल जाता है।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप गीत सुन रहे हैं फिल्म बंटी और बबली से, और कार्यक्रम है आपका अपना गीत मालिका। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। हम बात कर रहे थे खामोशियों की। तो दोस्तों, खामोशी जो है ना, अगर कहें कि हमारी बेबसी नहीं होती है, कभी कभी हम चुप हो जाते हैं तो हम अगला इंसान ये सोचता है कि शायद कोई बेबसी है या लाचारी है तो ये चुप है। लेकिन कभी कभी ये गहरे एहसासों, सुकून और आत्मसम्मान का प्रतीक भी होती है खामोशी। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझिए इंसान, गुमनाम समंदर के में ही अक्सर तूफान लाया करते हैं। तो अगली बार अगर आपने आसपास अगर किसी व्यक्ति को आप खामोश देखें तो भाई समझ जाइए वो समुद्र है, ये वो समंदर है जो शांत है अभी, और तूफान कभी भी आ सकता है।

बात तो जनाब सुन लेते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कि हमारी बात सुने, लेकिन खुद के अंदर की आवाज़ सुनने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं रहते। अगर कम शब्दों में कहूँ कि हमें डर लगता है अपनी अंदरूनी आवाज़ से। लेकिन खामोशी वो आईना होता है जिसमें इंसान को अपना असली चेहरा दिखाई देता है। आप दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट निकालिए, शांत बैठिए और दिमाग के जो शोर है दिमाग के आसपास उसे बिल्कुल भूल जाइए और देखिए, अपने आप से बात करिए, उस खामोशी को महसूस कीजिए। और खामोशी हमें सिखाती है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहकर मुस्कुरा देना ही एक खूबसूरत जवाब होता है।

जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना कि भाई हमने खामोशी से आपको अपने दिल में बसाया। कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ। और समय जो है वो इशारा कर रहा है कि भाई जाने का वक्त हो गया है कार्यक्रम से, लेकिन आपसे मिलूंगी 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत का। और घड़ी की सुइयाँ फ़िलहाल मुझे ये इशारा कर रही हैं कि भाई चेतना, अब आपको जाना होगा इस कार्यक्रम से। लेकिन विदा लेने से पहले आपसे यही कहूँगी कि रात को सोने से कम 2 मिनट जो है ना, वो कमरे की लाइट्स को ऑफ कर कर, अपने फ़ोन को दूर रख कर, ज़रा खामोशी को महसूस कीजिएगा। यही दुआ करूँगी कि ज़िंदगी में आपके प्यार का शोर हो और दिल में सुकून भरी खामोशी हो। खैर, मेरी बातें तो कभी समाप्त नहीं होंगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। आपको इस आखिरी गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। मिलूँगी आपसे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने

0: ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
1: Prime Minister further stated that
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
1: Sovereignty and territorial integrity of nations.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
4: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
5: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015

0: 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
1: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
2: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
1: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपये प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारम्भ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में MA की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर

0: experienced campaigners and young talent like Vaibhav Suryavanshi, Abhishek Sharma, Sanju Samson and Ishan Kishan, with Shreyas Iyer as captain and Tilak Verma as vice-captain. Besides Bumrah and Rana, the bowling attack includes Arshdeep Singh, Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi. With Swati Rakheja, Reshma Tiwari, News Desk.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi calls on SEO member countries to unite against entire terror ecosystem. SEO summit culminates with 13 outcome agreements spanning counter-terrorism, climate action and digital cooperation. Prime Minister concludes his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Supreme Court orders closure of FIRs across the country over student protests. CJP withdraws proposed September 5 March following assurances from centre. Heavy to very heavy rainfall likely at isolated places in Chhattisgarh, East MP and Uttarakhand tomorrow. And in men's cricket, 15-member Indian squad announced for 3-match T20 international series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के पूरे इको निज़ाम के खिलाफ मुत्तहद होने पर जोर दिया है। एससीओ समिट नताइज पर मबनी 13 माहदों के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें दहशतगर्दी, आब हवा से मुतालिक इकदामात और डिजिटल इश्तराक शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। ज़िराअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने नतायज पर मबनी निगरानी और किसानों को फवायद की बरवक्त फराहमी पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIR को रद्द करने का हुक्म दिया है। CJP ने मरकज की जानिब से यकीन दहानी के बाद 5 सितंबर का अपना मुजवजा मार्च वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर कल शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। और मर्दों के क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 बैन अलाक़वामी मैचों की सीरीज के लिए 15 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिज़ जमहूरिया की राजधानी बिश्केक में मुनक़िदा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ने ममलकत की काउंसिल की 26वीं मीटिंग में शिरकत की। समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सभी रुकन ममालिक पर दहशतगर्दी के लिए माली मदद फराहम करने, लोगों को भर्ती करने, शिदत पसंदी और महफूज पनाहगाहों के पूरे इको निज़ाम को नीस्त व नाबूद करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मामले में दोहरे मेयार की कोई जगह नहीं है। जना मोदी ने दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी लड़ाइयों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जंग और महाजाराइयाँ किसी मसले का हल नहीं है और सभी मामलात को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। जना मोदी ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता बरस शंघाई ताउन तंजीम तहजीबी डायलॉग की तजवीज़ पेश की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी का इजहार किया कि इसका पहला इजलास इस साल भारत में होगा। भारत की तरजीहात को SCO बिश्केक एलामिये में नुमाया तौर पर शामिल किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: एलामिये में बातचीत की खातिर एक कुर्राए अर्ज, एक कुनबा, एक मुस्तकबिल के नज़रिए का इरादा किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की और कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के सिलसिले में दोहरा मयार नाकाबिले कबूल है। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दों की नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के खिलाफ जामे इकदाम पर भी जोर दिया। रहनुमाओं ने इस साल भारत में होने वाले SCO सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का खैर मकदम किया और SCO यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस की भारत की पहल को सराहा। ऐलामिये में अंग्रेजी को SCO की सरकारी और कामकाज की जबान के तौर पर शामिल किए जाने की भी बात कही गई है। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोदी किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद आज दोपहर वतन वापस होने के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि SCO समिट के मौके पर मुख्तलिफ मीटिंगें भारत के लिए सूदमंद साबित होंगी। बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम की 26वीं समिट 13 अहम नतायज के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इन नतायज में इंसदाद दहशतगर्दी, आब हवा से मुतालिक इकदाम, तवानाई, कुदरती आफत के बंदोबस्त और डिजिटल इश्तराक का अहाता किया गया है। SCO के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर इसमें 4 मफाहमत नामों,

0: करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिफाई शोबे की सरकारी कंपनियों की पेशरफ महज इकतसादी सनती ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह कौमी सलामती के लिहाज से भी इंतहाई अहम है। मरकजी हुकूमत ने ईंधन के बरामदाती महसूल से मुतालिक अपने 15 रोज़ा ताज़ा जायजे के हिस्से के तौर पर पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज़ों के ईंधन की बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी पर नज़रसानी की है। नज़रसानीशुदा कीमतों के मुताबिक पेट्रोल पर बरामदाती महसूल में 1.5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जबकि डीजल पर यह महसूल 25 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ा दिया गया। हवाई जहाज़ों के ईंधन पर महसूल में 19 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफाई की गई नजर सानीशुदा शरहें आज से लागू हो जाएंगी। तहम घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। हुकूमत ने आज CJP की जानिब से 5 सितंबर को होने वाला अपना एहतजाज न करने के ऐलान का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने यकीन दहानी कराई कि एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ दर्ज सभी मामलात वापस लिए जाएंगे और मुस्तकबिल में उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरकज ने BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों से भी सलाह व मशवरा किया है और अब इस बात की यकीन दहानी को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की अवलिन तरजीह नौजवानों की फलाह व बहबूद और तरक्की है।
1: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: इंसानी हकूक से मुतालिक कौमी कमीशन NHRC ने उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर की जानिब से एक लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के मामले में दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरों और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पुलिस सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें वो ग्रेटर नोएडा से सवार हुई थी। ये वाकया गुज़िश्ता महीने की 4 तारीख को पेश आया था। कमीशन ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस मामले पर उनसे तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिसमें तहकीकात और अगर मुतासरा को कोई मुआवजा दिया गया हो तो उसकी तफसील भी शामिल होगी। कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट के बाद आज खुद नोटिस लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई तक नीट पेपर लीक मामले से मुतालिक तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIRs को आज रद्द करने का हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत दी कि इन मामलों को आगे न बढ़ाया जाए या इनके सिलसिले में तहकीकात न की जाए और इन्हें हर तरह से रद्द समझा जाए। तहम अदालत आलिया ने दिल्ली पुलिस को उन 2873 लोगों के खिलाफ एक FIR को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी है जो जंतर मंतर एहतजाज में मौजूद थे और जिनका संगीन मुजरिमाना रिकॉर्ड है। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान रिकॉर्ड किया जो मरकज की जानिब से पेश हुए। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। नेपाल में आए अचानक तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। वहीं हिफाजती फोर्सेस की जानिब से मुल्क के 8 मुतासरा ज़िलों से मजीद लाशों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। कई ज़िलों की नदियों में सतह आब के बढ़ने की वजह से सैलाब के ताज़ा अलर्ट और रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बचाव कारकुनों को फंसे हुए लोगों को निकालने के दौरान मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मर्दों के क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाली 3 T20 बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज के लिए भारत की 15 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर भारत की कप्तानी करेंगे जबकि तिलक वर्मा नायब कप्तान होंगे। इस सीरीज के 3 मैच 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है, वहीं नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को भी टीम में जगह दी गई है। जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट की वजह से जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई एक रोज़ा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाए थे। इसके अलावा वो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। चीन के ग्वांगडोंग सूबे के

0: शेंजेन में जारी चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की उन्नति हुडा बाहर हो गई हैं। आलमी नंबर 25 हुडा को खवातीन के सिंगल्स के शुरुआती राउंड में आलमी नंबर 12 जुनूबी कोरिया की किम गुआइन ने सीधे सेटों में 10-12 और 18-12 से शिकस्त दी। अब सारी तवज्जो मुकाबले में रह गए भारतीय खिलाड़ियों पर मरकूज हो गई है। कई सरकारदा बैडमिंटन खिलाड़ी कल अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई तआवुन तंजीम SCO के रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के पूरे इकोनिज़ाम के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया। SCO समिट नतायज पर मबनी 13 माहिदों के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई, जिसमें दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इक़दामात और डिजिटल इश्तराक शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। ज़िराअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने PM धन्य कृषि योजना की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने नतायज पर मबनी निगरानी और किसानों को फवायद की बरवक्त फरामी पर जोर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIRs को रद्द करने का हुक्म दिया है। CJP ने मरकज की जानिब से यकीन दहानी के बाद 5 सितंबर का अपना मुजवजा मार्च वापस ले लिया है।
1: درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الا ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از گاهنگ هندی بی کلام، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه های اسپاتلایت، گاهنگ هندی و نوای هند. شنوندگان گرامی، این برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ بی کلام هندی به راه می‌اندازیم.

دشت بی کسی ها، به دشت بی کسی ها چون غبار

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य

0: देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों से सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वो मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। 1995 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर को मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। श्री ठाकुर कार्मिक मंत्रिमंडल और योजना विभाग के मुख्य सचिव के साथ साथ मुख्य सतर्कता आयुक्त और नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन के प्रधान आवासीय आयुक्त का कार्यभार भी संभालेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादातर भागों में ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और दोस्तों, अब जिस फिल्म का गाना आप सुनेंगे, ये फिल्म आई थी 1938 में। फिल्म का नाम है अधिकार। इस न्यू थिएटर्स की फिल्म के निर्देशक पीसी बरुआ जी थे और इसको आवाज़ दी थी इस गाने को पहाड़ी सान्याल जी ने, और ये संगीतकार थे तिमिर बरन जी। और इस गाने में शास्त्रीय और रविंद्र संगीत की शैली को बहुत ही सुंदर प्रभाव आप देखने को मिल सकता है, आप इसमें देख सकते हैं। ये गीत सुहागरात के समय एक दुल्हन के मन में छिपे असमंजस और झिझक को बहुत ही प्यारे ढंग से प्रस्तुत करता है। आइए हम मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत पहाड़ी सान्याल जी की आवाज़ में।

और दोस्तों, अब जो गाना अब आपके कानों तक पहुंचेगा वो आया, जो फिल्म थी वो आई थी 1943 के प्रसिद्ध ऐतिहासिक फिल्म, हिंदी फिल्म तानसेन का एक बेहद ही लोकप्रिय और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत है। इसके गायक हैं और अभिनेता KL सहगल ने अपनी सुरीली आवाज़ में इसको गाया था, और संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश ने इसे इसका संगीत तैयार किया था। इसके बोल पंडित इंद्र जी ने लिखे थे, पंडित इंद्रचंद्र ने लिखे थे। ये गीत शास्त्रीय संगीत के गारा राग पर आधारित है। ये एक प्रेम गीत है जिसके बोल काहे करे गुमान रे गोरी है। इस फिल्म के इस गाने की मिठास और KL सहगल की गायकी ने इसे उस दौर में ही नहीं बल्कि आज भी, यानी इतने सालों बाद भी, क्लासिक जो संगीत प्रेमी है उनके बीच में अमर बना दिया है इस गाने को।

और दोस्तों, हर गाने की तरह अगली पेशकश भी, अगला गाना भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। और ये फिल्म आई थी 1943 में, पुरानी फिल्म है ये, उसका नाम है नर्स, और बेहद खूबसूरत और सदाबहार गीत है ये गाना। अपने दौर की मशहूर गायिका अभिनेत्री खुर्शीद बानो ने गाया था। और आगे बात करें तो इस फिल्म के समीक्षकों के अनुसार, ये गाना फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के परिचय या शुरुआती दृश्यों के दौरान आता है, जो प्रकृति और कोयल की कूक के जरिए मन के भावों को व्यक्त करता है। और इस फिल्म का निर्देशन चतुर्भुज दोषी ने किया था। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में खुर्शीद बानो के साथ अरुण कुमार आहूजा, जो आज के ज़माने के सुपरस्टार गोविंदा जी के पिता थे, वो शामिल थे। ये एक तरफा बलिदान और उलझे हुए प्यार की मर्म स्पर्शी कहानी थी। फिल्म नर्स का ये गाना आपके लिए आकाशवाणी रेनबो की तरफ से।

दोस्तों, आकाशवाणी का ये चैनल है AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल, जिस पर आप सुन रहे हैं पुराने सदाबहार गाने, गीत, सुनहरे।

और दोस्तों अब जो गाना आपके पास आएगा वो फिल्म है दर्द, और ये फिल्म आई थी 1947 में, यानी जस्ट जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इतने पुराने ज़माने का सदाबहार गाना, हम थे तुम्हारे तुम थे हमारे, हाय वो ज़माना याद करो, बेहद लोकप्रिय और भावुक गीत है। और इस खूबसूरत दर्द भरे गीत को अपनी सुरीली आवाज़ महान गायिका अभिनेत्री सुरैया जी ने दी थी। इसका संगीत मशहूर संगीतकार नौशाद अली ने जी ने तैयार किया था, और इस दौर में बहुत सफल रहा था ये गीत। इसके बोल प्रसिद्ध शायर शकील बदायूनी जी ने लिखे थे, और एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी जिसका निर्देशन ए आर किरदार साहब ने किया था। ये गाना पुराने दिनों की यादों और बिछड़े हुए प्यार के एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है। और लीजिए, ये प्रस्तुति सिर्फ आकाशवाणी के ज़रिए ही आप तक हो सकती है। रात के 1:27 हो रहे हैं, और इस वक्त में आप हमारे साथ इस रात का लुत्फ़ उठा रहे हैं।

तो हम आज वो सब कुछ याद कर रहे हैं जो पुराने ज़माने में, पुराने दौर में, लोगों के जहन में, लोगों के दिल में, लोगों की कलम से जो जज्बात निकलते थे। और इस वक्त में जो अगला गाना, अगला अंदाज़ हम लेकर आए हैं वो है मुकेश साहब की गायकी में। फिल्म है अंदाज़, जो आई थी 1949 में, और इसके गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब और संगीतकार हैं नौशाद साहब। इस फिल्म में जो कलाकार नज़र आए थे वो दिलीप कुमार साहब और नरगिस जी और राज कपूर साहब आए थे इस फिल्म में नज़र। ये गाना अपनी मधुरता और मुकेश साहब के दर्द भरे लेकिन सुरीले अंदाज के लिए जाना जाता है। इस गाने के बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। तो अब और इंतज़ार नहीं करवाते हैं और सुनवाते हैं आपको अंदाज फिल्म का मुकेश साहब की आवाज़ में ये बेहद बेहद ही प्यारा गाना।

और दोस्तों ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जो हमें पता नहीं होता और वो हो जाता है, जैसे कि अभी आपने ये गाना सुना, बेहद ही खूबसूरत सा गाना। और अब जो नगमा आपके पास आने वाला है वो लता जी की आवाज़ में है, और इस गाने ने अपने दौर में धूम मचा दी थी। इस गाने के संगीतकार जोड़ी शंकर शंकर जयकिशन जी थे, और इसके माध्यम से उन्हें और गीतकार हसरत जयपुरी को बहुत ही बड़ी पहचान मिली थी। फिल्म बरसात के सभी गाने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहे और आज भी पुराने संगीत प्रेमियों की जुबान पर रहते हैं, और हमें पूरा यकीन एतबार है कि अगर आप पुराने गीतों को पसंद करते हैं तो रात के इस वक्त भी हमारे साथ होंगे। रात के 1:34 और 41 सेकेंड्स हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल।

0: दोस्तों 1949 में फिल्म आई थी चांदनी रात। उसका प्रसिद्ध गीत चांदनी रात है, अभी हम सुनेंगे सुनाएंगे आपको। इस दौर के जो लिखा था उस दौर के मशहूर संगीतकार नौशाद साहब ने इसको लिखा था, और एक बेहद क्लासिकल, बेहतरीन क्लासिकल गाना है। इसमें पार्श्व गायिका और अभिनेत्री उमा देवी और तस्दुक हुसैन ने कोरस के साथ गाया था, जिसे आप टुन टुन के नाम से भी जानते हैं। और इस फिल्म को गीतकार थे, इस गीत के गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। और लीजिए, और ये प्रस्तुत है ये बेहद ही खूबसूरत गाना, जो आए ये फिल्म आई थी 1949 में, ताजमहल पिक्चर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ये फिल्म।
1: हाय क्या बात है।

हैं 1949 की क्लासिकल जो रहस्यमयी फिल्म थी ये महल, इसका ये खूबसूरत और भावुक गीत मैं वो हंसी हूँ जो लब पे आने से रह गई, हिंदी सिनेमा के बेहतरीन और दर्द भरे नगमों में गिना जाता है। इस गाने को मशहूर पार्श्व गायिका राजकुमारी जी ने अपनी सुरीली और मखमली आवाज़ में गाया था। फिल्म का संगीत महान संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश ने दिया था और इसके बोल नक्शब जरारवी साहब ने लिखे थे, और इस गाने के बोल बहुत ही संवेदनात्मक और गहरे हैं जो एक ऐसी अधूरी खुशी, उम्मीद और दर्द को दर्शाते हैं जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाए। फिल्म के रहस्यमयी और उदास माहौल के साथ ये गीत पूरी तरह मेल खाता है, और इस रात को जहन में रखते हुए ये गाना आपको और भी प्यारा लगने वाला है। सुनते रहिए दिल्ली के AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल को, जिसमें प्रोग्राम चल रहा है गीत सुनहरे।

दोस्तों उस वक्त की चांदनी रातें भी कितनी खूबसूरत हुआ करती थी ना, आज की रातों की तरह नहीं कि हम सब अपने मोबाइल में ही डूबे रहते हैं। और फिलहाल अगला गाना जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो भी बहुत ही प्यारा सा गाना।

और दोस्तों, अब जो गाना हम आपको सुनाएंगे वो बहुत ही प्यारा सा गाना है जो हमने लिया है फिल्म नमूना से, और फिल्म आई थी 1949 में। आवाज़ दी है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने, और इस फिल्म के निर्देशक और मुख्य अभिनेता किशोर साहू थे। इसमें कामिनी कौशल और देवानंद ने भी अभिनय किया था। ये गाना प्रेम से मिले धोखे और आंसू और दिल के टूटने की कसक को बहुत ही खूबसूरती और सादगी के साथ बयान करता है, और उस दौर में कामिनी कौशल जी और देवानंद साहब की तो बात ही कुछ और थी। आइए हम भी सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत सा गाना। फिल्म है नमूना, आई थी ये फिल्म आई थी 1949।

एक खूबसूरत गाना, एक ऐसी फिल्म आन आई थी, फिल्म 1952 में। इसका गाना आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई। सुनहरे दौर के ये अत्यंत मधुर और रोमांटिक गीत है हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर का। और ये इसमें आवाज़ दी थी लता मंगेशकर जी ने, संगीतकार थे नौशाद जी और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये गीत अभिनेत्री इसमें निम्मी जी नजर आई थी और अभिनेता दिलीप कुमार साहब नजर आए थे कि फिल्म का हिस्सा है जिसमें मुख्य रूप से, और ये गाना खास तौर पर निम्मी जी पर फिल्माया गया था। आइए हम भी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई।

और दोस्तों आज के कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति सच में इतनी ज़्यादा सुंदर है कि आप इसे सुनकर आप भी कहेंगे कि सच में आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनने को मिला, पुराने ज़माने का। साल 1952 में आई क्लासिकल फिल्म दाग का गाना हम दर्द के मारो का भारतीय सिनेमा के सबसे दर्द भरे और यादगार गीतों में से एक है। ये गीत मुख्य रूप से मैं और गम के सहारे जी रहे एक टूटे हुए इंसान की दास्तान को बयां करता है। इस

गाने की खास बात की अगर हम बात करें तो इसके पार्श्व गायक थे तलत महमूद साहब ने अपने मखमली आवाज़ और कपकपाती आवाज़ में से को गाया था, और इसका शानदार और सदाबहार संगीत प्रसिद्ध जोड़ी शंकर जयकिशन जी ने तैयार किया था, और इस गीत के बेहद भावुक गीत को जाने माने शायर और गीतकार हजरत जयपुरी साहब ने लिखा था, और पर्दे पर इस गाने को ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब पर फिल्माया गया था, जिसमें वो मय के नशे में चूर और गमगीन नज़र आते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रात में इन गीतों के साथ आपकी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। गीत सुनहरे से अब दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे पुराने सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब समाचार होंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापारों को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग

संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ दो दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से दो दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वे मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। एयर मार्शल विवेक खांडे ने कल भारतीय वायुसेना में महानिदेशक चिकित्सीय सेवाओं का पदभार संभाल लिया है। उन्हें स्थायी रूप से भारतीय वायुसेना में तैनात किया गया है। एयर मार्शल हांडे दिसंबर 1988 में सेना चिकित्सा कोर में शामिल हुए थे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे बिना रुकावट के फिल्म गानों का आनंद ले रहे थे, और अब कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और

और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में भारत में डाटा सेंटर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुगमता पर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डाटा सेंटर क्लाउड सेवा प्रदाताओं, बिजली उत्पादकों और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमों को सरल बनाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से दो दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादातर भागों में भी ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उषा विजय कुमार का बजाया राग चारू केसी में गोटू वैद्य।

बताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आपने सुना उषा विजय कुमार का राग चारुकेसी में गो टू वैद्यम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 सितंबर 2026। श्रोताओं, सुबह के 4:53 और

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हूं आपसे थोड़ी देर में, यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे योगबद्ध पद्मासन। 5:20 पर देशभक्ति गीत सुनेंगे आप, और 5:30 पर आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी में ऋतिक अदलखा का राग अहीर भैरों में गायन।

0: 6:40 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आप सुनेंगे बंकिम चंद चैटर्जी। 6:45 पर हर रोज की तरह आज भी होगा श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आज का भाग होगा अयोध्या कांड। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका में आज के कलाकार हैं नीलम पांडे के भजन सुनेंगे आप। 7:30 पर कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 7:50 ये वो कार्यक्रम थे जिन्हें आज आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। 5:00 को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के संबंध में दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों पर चिंता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करने और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: जल अवसंरचना परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन, जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान, पेयजल प्रणालियों के स्रोतों की स्थिरता तथा जल जीवन मिशन का 2रा चरण। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के अंतर्गत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर बल दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर रहेंगे। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वे मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों से मुलाकात

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणता पूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और

का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें।

0: शब्दों की ओर विशेष ध्यान दें।
1: ठिंचुंग पंगमन जी से आए वोन पोसुंग नरेंद्र चंचल छांग द ईशो कछु।